ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के

ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 54 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास

0: किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं मातृभूमि के इस गीत के साथ। मेरी सदा रहे ये बान, जन्म भूमि हित मरना सीखूं, पर सेवा हित जीना सीखूं, रखूं देश की शान। मेरी सदा रहे ये बान।

तेरी कृपा को मैंने पाया, जीवन धन्य हो गया। तेरे नाम का दीप जला, मन उजियारा हो गया। तेरी करुणा की छाया में हर दुख दूर हो गया। हे माँ, तेरी कृपा को मैंने पाया, जीवन सफल हो गया।

सबसे सच्ची पुकार, खाली झोली, नम आंखें और तेरी चौखट पर अटूट विश्वास। न कोई शिकायत, न कोई गिला, बस तेरी रहमत की उम्मीद और एक ही दुआ, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे मालिक, मेरी लाज रखना।

भक्ति का सबसे सुंदर रूप है आरती, जहां दीप की लौ में श्रद्धा और समर्पण एकाकार हो जाते हैं। जब मन श्रद्धा से भर उठे और हृदय प्रभु के चरणों में झुक जाए, तब आरती के स्वर गूंजते हैं। दीपक की ज्योति में भक्ति का प्रकाश और प्रभु चरणों में समर्पण का भाव, यही विधि मंगल आरती की।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने लता मंगेशकर, जानी बाबू और साथियों की आवाजों में भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है कार्यक्रम प्रकाश किरण का। इस कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं पद्म पुराण से पाठ।
1: व्यास मुनि के पद्म पुराण में मनोरम धार्मिक कथाओं के साथ भारतीय भूमि को विभूषित करने वाली ऋतुओं तथा मासों की विशेषताओं का पर्याप्त वर्णन है। नैसर्गिक सुषमा एवं धार्मिक कार्य परंपरा के कारण कार्तिक मास बड़ा पवित्र माना गया है, अतः इसके महात्म्य का विस्तृत वर्णन इस पुराण में हुआ है। इस मास में प्रातः स्नान का बड़ा महत्व है। कार्तिकम सकलम मासम प्रातस्नायी जितेन्द्रियः जपन हविष्य भुक्षांतः सर्वपापैः प्रमुच्यते। पूरे कार्तिक मास भर प्रातस्नान करने वाला जितेन्द्रिय

जा गायत्री का जप करके होम के उपयुक्त घी दूध आदि पदार्थों को खाता हुआ शांत मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। विशेष रूप से चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर प्रातः स्नान करने वाला यमराज के लोक को नहीं जाता। तैले लक्ष्मी जले गंगा दीपावल्याश्चतुर्दशीं प्रातः स्नानं तु यः कुर्यात्।

0: कार्तिकम लभते फलम। जो एक लक्ष तुलसी दल से कार्तिक में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे पत्ते पत्ते में मोक्ष का फल मिलता है। कार्तिक में दाल खाना वर्जित है। कार्तिके द्विदलम त्यजेत। दीपावली के उत्सव के बाद इस मास का यमद्वितीया पर्व बहन भाई के स्नेह का परिचायक है। स्नेहेन भगिनी हस्तात् भोक्तव्यम पुष्टिवर्धनम दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विशेषतः। इस दिन बहन के घर में भोजन करना तथा उन्हें दान देना उचित कर्तव्य है। इसी मास की अक्षय नवमी कृतयुग की आदि तिथि मानी गई है। कार्तिके शुक्ल नवमीम अवाप्य विजितेन्द्रियः हरिम विधाय सौवर्णम तुलस्या सहितं विभुम। पूजये विधिवत भक्त्या व्रति तत्र दिनत्रयम् ततो यथोक्त विधिना कुर्याद् वैवाहिकं विधिम। इस दिन से एकादशी तक 3 दिन तुलसी के साथ विष्णु की पूजा तथा अंत में दोनों के विवाह का उत्सव मनाना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी कहते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार इस दिन भगवान क्षीर सागर में 4 महीने की गाढ़ निद्रा के बाद जागते हैं। अतः भक्तगण उनसे जागने की प्रार्थना करते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते। कार्तिक की पूर्णिमा में यदि विशाखा नक्षत्र में सूर्य तथा कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा हो तो पद्मक नामक योग होता है। उस अवसर पर पुष्कर तीर्थ में स्नान दान अनंत पुण्य को देने वाला है। विशाखासुच यदा भानु कृत्तिकासुच चंद्रमा सयोग पद्मको नाम पुष्करे श्रुति दुर्लभ। इसी दिन विष्णु भगवान का मत्स्यावतार माना जाता है। वरान दत्त्वा यतो विष्णुर् मत्स्य रूपो भवत्ततः तस्याम दत्तम हुतम जप्तम तदक्षय्य फलम स्मृतम। इस तिथि को भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया था अतः इसमें दान यज्ञ जप अक्षय फल को देने वाला है।
1: अभी आप सुन रहे थे पद्म पुराण से पाठ। कार्यक्रम था प्रकाश किरण। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। इसमें हम आपको जानकारी देंगे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज सुनेगा रतनलाल की वार्ता जिसका विषय है फसल चक्र का महत्व। स्वास्थ्य चर्चा की जाएगी सुबह 7:10 पर। डॉक्टर गौरव मित्तल आज जानकारी देंगे तंबाकू से होने वाली मुंह की बीमारियों के विषय में।

आसपास की सूचनाओं पर आधारित दैनिक कार्यक्रम आसपास प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 7:30 बजे। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुना जा सकेगा सुबह 8:45 पर। इसके अलावा सुर सरिता कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 10 बजे। पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन सकेंगे सुबह 9:25 पर। लखनऊ केंद्र से सामयिक चर्चा हम प्रसारित करेंगे सुबह 9:15 पर। लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत सुना जा सकेगा सुबह 9:45 पर। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे राजेंद्र शुक्ला। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 10:30 बजे सुनिएगा अरविंद मसीह द्वारा प्रस्तुत राग विभास और राग तोड़ी। दिल्ली केंद्र से प्रसारित प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे और ये आप सुन सकेंगे कार्यक्रम।

की बात में समय रहेगा सुबह 11 बजे का। एक बार फिर सुन लीजिए, आज दिन में 11 बजे आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम मन की बात। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का संस्कृत में प्रसारण आप सुन सकेंगे 11:30 बजे।

लोक मंजरी कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सीमा पोरवाल और प्रेम कुमार शर्मा की आवाजों में कुछ ब्रज लोकगीत। नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने सुना जा सकेगा दिन में 12:30 बजे। हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता अपना कार्यक्रम बालमंडल सुन सकेंगे आज दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम में आज बच्चे सुनेंगे अच्छी आदतें अच्छी सेहत, साथ ही रोचक जानकारी दुनिया के सबसे बड़े और छोटे देश के विषय में, कहानी सजा और बच्चों के मनोरंजन के लिए बाल गीत। समय ध्यान रखिएगा दोपहर 1:15 का। 1:45 का समय रहेगा सुगम संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा रीता गांगुली की गाई चंद गजलें। नाटक प्रस्तुत किया जाएगा दोपहर 2:30 पर और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन सुना जा सकेगा दोपहर 3 बजे। दैनिक कार्यक्रम युववाणी रोजाना की तरह शाम 5:30 बजे, ग्रामीण कार्यक्रम शाम 6 बजे और मजदूर मंडल कार्यक्रम सुनेगा शाम 6:30 बजे। विविधा क्रम के अंतर्गत आज शाम 7:10 पर सुनिएगा वार्ता जीवन पहेली का नाम है योग। इसके अलावा इस वार्ता को प्रस्तुत करेंगे उमाकांत मिश्र और यह होगी भेंट वार्ता जिसमें बात करेंगे नीरज जैन। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7:30 बजे और गाने नए पुराने प्रस्तुत किए जाएंगे रात्रि 8 बजे। दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम अनुगूंज हम अनुप्रसारित करेंगे रात्रि 9:30 बजे और रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति होगा। तो ये थी कार्यक्रमों संबंधी जानकारी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मनस गान का आज का प्रसंग।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

0: आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे लक्ष्मी शंकर, रामकृष्ण और चंदेश्री। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है कार्यक्रम खेती की बातें का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रतन लाल की वार्ता, जिसका विषय है फसल चक्र का महत्व।
1: किसान भाइयों, आप भली बात जानते हैं कि खेतों में किसी निश्चित अवधि में फसलों को हेर फेर कर ऐसे क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरता का हास न हो, फसल चक्र या सस्यावर्तन कहलाता है। आज हम आपसे फसल चक्र के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। फसल चक्र एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय अपनाए जा सकते हैं। फसल चक्र अपनाने से लाभ ही लाभ हैं। खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, रोग व कीटों के आक्रमण से फसलें बची रहती हैं, खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है, दलहनी फसलों के कारण मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा ठीक बनी रहती है तथा जैव पदार्थों की कमी नहीं हो पाती है, नत्रजन की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही फसलों की पैदावार भी बढ़ती है तथा फसल उत्पादन में लागत कम आती है। भूमि का कटाव रोकने में भी सहायक है एवं उपलब्ध साधनों जैसे बीज, उर्वरक, जल तथा श्रम का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग होता है। घरेलू तथा बाजार की अनाज सब्जी की पूर्ति होती है एवं मुख्य बात, कई फसल आने से वर्ष भर आमदनी होती रहती है। फसल चक्र के कुछ सिद्धांत हैं जिनका ज्ञान आवश्यक है, जैसे उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगाना चाहिए। इस प्रकार फसल बोने से मृदा की भिन्न भिन्न परतों में पौधों के भोजन की समानता बनी रहेगी तथा उनको पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता रहेगा। जैसे कपास व अरहर के बाद मटर व गेहूं बोना, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसल बोनी चाहिए। इससे पिछली फसल की बची हुई खाद का सदुपयोग हो जाता है और आपको खेत में अधिक खाद नहीं देनी पड़ती है। जैसे आलू के बाद प्याज लगाएं, फलीदार फसलों के बाद

बिना फलीदार फसलें बोना चाहिए, क्योंकि फलीदार फसलों के बाद द्वारा वायुमंडल की नत्रजन का स्थिरीकरण संस्थापन किया जाता है। इसके कटने के बाद बिना फलीदार फसलें भूमि में शेष बची नत्रजन का उपयोग कर लेती हैं, जैसे मूंग के बाद गेहूं एवं मटर के बाद प्याज। अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल बोना चाहिए। ऐसा करने से मृदा की संरचना ठीक बनी रहती है तथा फसल उत्पादन में लागत भी कम आती है, जैसे मक्का के बाद जौ या चना बोना चाहिए। अधिक जल चाहने वाली फसल के बाद कम जल चाहने वाली फसल बोना चाहिए। ऐसा करने से एक तो सिंचाई के साधनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना पड़ता तथा भूमि में लगातार अधिक जल बने रहने के कारण वायु संचार तथा जीवाणुओं की क्रियाओं में पड़ने वाली बाधाओं से बचा जा सकता है। जैसे धान के बाद चना या मटर या मसूर बोना चाहिए। कृषि साधनों का क्षमतापूर्ण उपयोग होना चाहिए। फसल चक्र में फसलों का समावेश, सिंचाई, उर्वरक, बीज, मजदूर तथा आपकी स्वयं की आवश्यकता की वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, चारा व सब्जी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ऐसी फसलों को बोना चाहिए जिसके परजीवी कीट तथा बीमारी फैलाने वाले कीटाणु समान न हो। किसान भाइयों, अब आपसे फसल चक्र में फसलों के चुनाव पर प्रभाव डालने वाले कारक या फैक्टर्स पर चर्चा करते हैं, जिनमें मुख्यतः वहाँ की जलवायु, भूमि, सिंचाई के साधन, कृषि श्रमिकों की उपलब्धता, घरेलू आवश्यकताएं, बाजार की मांग, आवागमन के साधन, खेती का प्रकार, सामाजिक रीति रिवाज, पूंजी या धन की उपलब्धता एवं स्वयं किसान की फसल उगाने की क्षमता मुख्य है। इन पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु सबसे मुख्य है, जिसमें तापक्रम, वातावरण की नमी तथा वर्षा जलवायु के मुख्य तत्व होते हैं। फसलों के अंकुरण, वृद्धि तथा पकने के लिए विभिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक प्रकार की जलवायु न मिलने पर फसल में दाना तथा फल नहीं लगते हैं। जलवायु की विषमता के कारण सभी फसलें एक ही स्थान पर नहीं उगाई जा सकती हैं। जैसे फूलगोभी की फसल को गर्म स्थानों पर नहीं उगा सकते हैं, जबकि धान गर्म व तर जलवायु में आसानी से उगाई जा सकती है। जहां तक भूमि का प्रश्न है, भूमि के भौतिक व रासायनिक गुणों का फसल की उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे चिकनी मिट्टी में आलू, मूंगफली, ऊसर भूमि में आलू, टमाटर तथा बलुई भूमि में धान, गन्ना सफलतापूर्वक नहीं उगाए जा सकते हैं, जबकि चिकनी मिट्टी में धान व कपास, ऊसर भूमि में धान व ढेंचा तथा बलुई भूमि में आलू व मूंगफली फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। सिंचाई के साधन होने पर कोई भी फसल ले सकते हैं, लेकिन असिंचित दशा में वही फसलें ली जाती हैं जिनकी जल मांग बहुत कम है, जैसे अंडी, ज्वार, बाजरा आदि। ट्यूबवेल होने पर जल्दी जल्दी पानी चाहने वाली फसलें जैसे सब्जी उगा सकते हैं, जबकि नहर का साधन होने पर देर से पानी चाहने वाली फसलों को उगाया जाना चाहिए, जैसे मटर व गेहूं। कृषि हेतु श्रमिकों की आवश्यकता वर्ष भर पशु तथा फसलों के कार्य के लिए पड़ती है। यदि श्रमिक व पशु किसान के पास उपलब्ध हैं, तो वे आसानी से किसी भी फसल को अपने खेत में उगा सकते हैं, अन्यथा ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिसमें पशु तथा श्रम की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मटर, सरसों आदि। घरेलू आवश्यकताओं भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अपने घर के लिए दाल, अनाज, तेल, रुई, चारा तथा सब्जी आदि की आवश्यकता पड़ती है। अतः सभी प्रकार की फसलें उगानी चाहिए, चाहे क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार कम या अधिक रखा जाए। इसके अतिरिक्त फसल का चुनाव बाजार की मांग पर निर्भर करता है। जैसे गन्ना मिल के पास गन्ना, कपास मिल के पास कपास की मांग अधिक रहती है। आवागमन के साधन भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। खेत से मंडी या शहर के लिए अच्छे आवागमन साधन होने पर सब्जियां तथा चारे की फसल की खेती लाभदायक है। पूंजी या धन की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे यदि किसान के पास धन का अभाव है, तो वे अधिक लागत वाली फसलें जैसे गन्ना या आलू नहीं लगा सकता, जिनमें खास निराई गुड़ाई, सिंचाई आदि की व्यवस्था में धन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे मुख्य बात, किसान भाइयों, आपके स्वयं की फसल उगाने की क्षमता पर निर्भर है। जिन फसलों को उगाने का आपको ज्ञान हो, वही फसलें फसल चक्र में उगानी चाहिए। कुछ फसलों की खेती के लिए सरकार से अनुमति भी लेनी पड़ती है, जैसे तंबाकू आदि। फसल चक्र को हम तीन फसलों रबी, खरीफ व जायद के लिए अपनाते हैं, जिनमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय फसल चक्र होते हैं। एक वर्षीय सघन फसल चक्र में कोई भी चक्र अपना सकते हैं, जैसे मक्का, आलू या तोरिया, गेहूं, मूंग या लोबिया, मक्का, आलू, आलू खरबूजा, धान, तोरिया, गेहूं, मूंग या लोबिया, या मक्का, आलू, प्याज या मूंग, मक्का, आलू, तंबाकू, ज्वार, चारा, आलू या तोरिया, गेहूं, मूंग, मक्का, उर्द, आलू, सूरजमुखी, मक्का, उर्द, गेहूं, मूंग, मक्का, आलू, कुकरबिट्स यानी करेला, तरबूज, खरबूज, खीरा आदि। द्विवर्षीय फसल चक्र में कपास, मटर, गेहूं, कपास, मटर, बाजरा, चना, ज्वार, चना, बाजरा, चना,

0: मक्का आलू गन्ना, धान मटर गन्ना, मक्का आलू भिंडी टमाटर, बाजरा गेहूं बाजरा मटर, बहुवर्षीय फसल चक्र में हरी खाद आलू गन्ना पेड़ी, कपास मेथी गन्ना पेड़ी, सनई गेहूं, मूंगफली अरहर गन्ना मूंग गेहूं। किसान भाइयों, सस्य योजना या क्रॉपिंग स्कीम के अनुसार निश्चित समय में अलग अलग खेतों में फसल चक्रों को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है कि अधिक उपज मिल सके और भूमि की उर्वरा शक्ति का हास न हो। इसके अतिरिक्त मिलवा खेती तथा सघन खेती भी अपनाई जा सकती है। एक खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसल उगाना ही मिलवा खेती कहलाता है। इसमें मिश्रण की फसलों की बुवाई एक साथ बीज को मिलाकर पंक्तियों में अथवा छटवा विधि से की जाती है। मिश्रण की फसलों के पकने का समय या तो एक ही होता है, जैसे गेहूं या चना या गेहूं जौ या अलग अलग जैसे अरहर ज्वार। सेचर विधि के में मिश्रण के बीज आपस में मिलाए नहीं जाते, बल्कि अलग अलग पंक्तियों में बोए जाते हैं। जैसे सरसों की दो पंक्तियों के बीच गेहूं की पांच पंक्तियां या अरहर की दो पंक्तियों के बीच पांच मूंगफली की पंक्तियां बोते हैं। मुख्य फसल को बचाने हेतु रक्षक फसलें भी बोई जाती हैं, जैसे गन्ना के खेत के चारों ओर पटसन बोना या अरहर बोना। मिश्रित फसल के बहुत लाभ हैं, जैसे प्रतिकूल मौसम के बावजूद एक फसल मिल जाती है, भूमि का पूर्ण उपयोग होता है, अधिक उपज मिलती है, भूमि में कटाव में कमी होती है, खरपतवारों का संघर्ष कम तथा भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहती है। फसलों के उत्पादन खर्च में भी कमी आती है। श्रम व पूंजी के उचित उपयोग के साथ ही सीमित क्षेत्रफल में अधिक फसलें ली जा सकती हैं। मिश्रित फसल से हानियां भी हैं, जैसे शुद्ध बीज प्राप्त होने में असुविधा होती है, कटाई हेतु कटाई मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते, फसल पर कीटनाशी दवा छिड़कने में असुविधा व खरपतवार नियंत्रण में कठिनाई आती है। इसके अतिरिक्त बहुफसली खेती भी अपनाई जा सकती है, जिनमें एक वर्ष की अवधि में दो या अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे मक्का गेहूं या मक्का आलू तंबाकू या धान तोरिया गेहूं या मक्का आलू प्याज।
1: फसल चक्र का महत्व, इस विषय में अभी आपको जानकारी दे रहे थे रतनलाल। कार्यक्रम था खेती की बातें, प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:55 हुए हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार पहले संस्कृत में होंगे, उसके पश्चात हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
2: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34th संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वं इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह श्री लाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः

0: देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधि मन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लैङ्गः पञ्चदिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक आईएसआई मुंबई अंडरवर्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः अष्टौ अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष सीपी अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्ण स्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्रीशुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली महाराष्ट्र पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अंतर्राष्ट्रीय विंशतिं प्रतिविंशति द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटंस दलम अद्य अहमदाबादस्य नरेंद्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरंभः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में

0: पास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. Earlier, President of Myanmar yesterday arrived at Bodh Gaya in Bihar on a 5-day visit to India and prayed at Mahabodhi Temple. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing last evening. In a social media post, Dr. Jaishankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st of October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off-season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs and strengthen the competitiveness of Indian textiles. The ministry emphasized that the measure will save

0: safeguard the interests of the farmers and ensure market stability. Delhi Police Special Cell has arrested 8 accused working at the behest of Pak ISI Mumbai Underworld Network. Addressing a press conference, Special CP of Delhi Police Special Cell Anil Shukla said that the accused were tasked to attack vital installations and security personnel in Delhi. He said that arms and explosives have been recovered from their possession. Mr. Shukla informed that the accused were operating under directions of cross-border handlers and they were arrested from Delhi, Maharashtra and Pune. Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu has hailed the launching of Sky Car system at IGI Airport in New Delhi. The minister said that advanced weather monitoring systems like Skycast can significantly improve flight operations during fog and turbulence. He added that as this technology expands to more airports across the country, it will strengthen safety and enhance the travel experience for passengers. Jammu and Kashmir Minister Sakina Naidu has announced summer vacations for all government and private colleges falling under the summer zone of Jammu Division from 1st of June to 5th of July. I beg your pardon, to 15th of July. The minister said the decision has been taken in view of the onset of the summer season and to ensure the well-being of students, teaching faculty and college staff. The minister further informed that regular academic activities in all colleges will resume after the conclusion of the vacation period on 15th of July. In IPL cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of 2026 season at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. RCB's batting has been one of the strongest in the tournament, with Virat Kohli leading the charge. In the bowling department, Bhuvneshwar Kumar and Josh Hazlewood have been among their key performers with a new ball. Meanwhile, Gujarat Titans will once again rely on key batters like skipper Shubman Gill, Sai Sudarshan, Josh Butler, while the all-rounder Jason Holder has strengthened their bowling attack with important wickets in the second half of the season. In badminton, India's men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Indonesian duo of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alifian in the final of the Singapore Open today. The Indian pair is yet to win a title since clinching the Thailand Open in May 2024. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर गौरव मित्तल आपको जानकारी देंगे तंबाकू से होने वाली मुंह की बीमारियों के विषय में।
2: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हमारी जानकारी का विषय है तंबाकू से होने वाली मुंह की बीमारियां। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गौरव मित्तल को। तो डॉक्टर मित्तल, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि तंबाकू के खाने से कौन कौन सी मुंह की प्रमुख बीमारियां होने की संभावना हो सकती है।
3: देखिए, तंबाकू जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में निकोटीन बोलते हैं, ये खाने से मुख में कई तरह के रोग बनते हैं, जिसमें कि कैंसर एक प्रमुख रोग है। इसके अलावा मुंह में सड़न होना, मुंह में बदबू आना और भी तमाम रोग हैं जिसके कारण कि इंसान को परेशानी हो सकती है। ना सिर्फ तंबाकू का सेवन नुकसानदायक है, और इसके अलावा जो मुंह के जितने भी रोग हैं वो मुख्यतः आपके तंबाकू के सेवन से ही बनते हैं। इसमें से प्रमुख आपका ल्यूकोप्लाकिया है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति सिगरेट के जरिए या पाउचों, आजकल जो पाउच आ रहे हैं उनके जरिए तंबाकू का सेवन करते हैं तो एक सफ़ेद झिल्ली बन जाती है उनके मुँह में
2: जी,
3: उसको ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं, जो कि कैंसर का ही एक रूप है। अगर समय से इसका इलाज ना हो, इसका समय से इसको दिखाया ना जाए, तो ये आगे चल के कैंसर में तब्दील हो सकता है, कोई पेशेंट के लिए ये दिक्कत कर सकता है।
2: निश्चित रूप से आजकल देखने में आता है, बल्कि एक आम प्रचलन हो गया है कि लोगों ने पाउच लिया, खोला और पूरा का पूरा पाउच एक बार में मुंह के अंदर,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उनको ये एहसास करता ही नहीं होता कि ये पाउच का जो पदार्थ है वो हमारे मुंह के अंदर जाकर कितनी परेशानी पैदा कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक बहुत चिंता की बात है। और आजकल तंबाकू से होने वाली जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, विशेष रूप से मुंह की बीमारियां
3: जी, बिल्कुल।
2: अच्छा, दांतों के संदर्भ में अगर हम देखें या मसूड़ों के संदर्भ में अगर हम देखें, तंबाकू

0: की बात करें
1: जी
0: तो दांतों के ऊपर या मसलों के ऊपर तंबाकू का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?
1: जी देखिए, दुष्प्रभाव, सबसे प्रमुख तो दुष्प्रभाव ये है कि दांतों के ऊपर तंबाकू निशान छोड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका जो सौंदर्य है उसमें गिरावट आती है। दांतों के ऊपर निशान छोड़ जाते हैं, वो स्केलिंग की प्रक्रिया से भी सही होने में, अगर आप तंबाकू लंबे समय तक, लंबे अवधि तक अगर आप खा रहे हैं तो तंबाकू के निशान साफ भी नहीं होते हैं। इसके अलावा तंबाकू मसूड़ों में भी गंदगी पैदा करने वाले कीटाणु, सड़न, इन सब को जन्म देता है, और तंबाकू का सेवन कैंसर को जन्म दे सकता है, जो कि आगे चल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और
0: बहुत ही
1: उपचार भी
0: एक जटिल उपचार है
1: जटिल
0: इसका।
1: उपचार है इसका।
0: तो डॉक्टर मित्तल, अक्सर तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों का मुंह,
1: जी
0: उनका जबड़ा पूरा नहीं खुल पाता है,
1: जी
0: ये शिकायत अक्सर देखने में आती है।
1: जी
0: तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये किस दुष्प्रभाव की वजह से हो सकता है?
1: देखिए, तंबाकू में जो जिसको हम निकोटीन बोलते हैं, ये एक कैंसर का कारक है,
0: जी
1: कैंसर कॉज करने वाला है। जब भी हम तंबाकू खाते हैं तो सब ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है कि तंबाकू खाने से धीरे धीरे आदमी का जो मुख होता है
0: जी
1: वो कड़ा होता जाता है, उसके अंदर की जो स्किन होती है, जो खाल होती है, वो कड़ी होती जाती है। इसके तहत मुंह का खुलना असंभव हो जाता है,
0: जी
1: या मुंह खुलता है तो बहुत कम खुलता है। इसमें खाना खाने में ठंडा गर्म लगना, खाना खाने में परेशानी, तो इसका उपाय बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि उपाय से ज्यादा जरूरी है कि आजकल की जो जो युवा पीढ़ी है
0: जी
1: वो तंबाकू के सेवन से बचे, ताकि उपाय करने से पहले उस रोकथाम हो सके।
0: निश्चित रूप से अगर आप मुंह की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमारी बात मानिए, हमारे डॉक्टर साहब की बात मानिए, हमारे इस स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत हम जो जानकारियां दे रहे हैं उस पर अमल कीजिए और तंबाकू का सेवन मत कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। तो डॉक्टर मित्तल, आपने हमारे श्रोताओं को तंबाकू से होने वाली मुंह की बीमारियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे तंबाकू से होने वाली मुंह की बीमारियां विषय पर डॉक्टर गौरव मित्तल से नीरज जैन की बातचीत। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा, हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

0: जिसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहाँ पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को स्थापित किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। इस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
4: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अयोध्या स्थित डोगरा

0: रेजिमेंटल सेंटर में कल अग्निवीर योजना के तहत सातवें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
1: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित एक

0: करेंगे। अब जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
1: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलने और वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक के बीच बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में रोजाना की तरह अपने आसपास की सूचनाओं के अलावा हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक चर्चा, गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और आपके मनोरंजन के लिए गीत। तो आइए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं आसपास की खास सूचनाओं से। डालते हैं एक नजर आज क्या घटित हो रहा है हमारे आसपास। तो साथियों, सबसे पहले तो परीक्षा की बात कर लेते हैं। आज है बीएड प्रवेश परीक्षा और नकल रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 27 केंद्रों पर लगभग 25,500 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और इस परीक्षा के लिए कल दोपहर बाद से ही अभ्यर्थियों का शहर में आना शुरू हो गया था। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश संयुक्त

नीट प्रवेश परीक्षा आज 27 केंद्रों पर होने जा रही है। दो पालियों में होने जा रही इस परीक्षा में 25,500 अभ्यर्थी बैठेंगे। नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथियों, अभ्यर्थियों ने शेल्टर होम, आईएसबीटी, कैंट रेलवे स्टेशन और राजा की मंडी स्टेशन परिसर में अपना डेरा जमा रखा है, क्योंकि वो कल से ही यहां पर आना शुरू हो चुके हैं। एमजी रोड सहित अन्य रूट में नियमित अंतराल से सिटी बसों की व्यवस्था की गई है, इससे अभ्यर्थियों को कुछ परेशानी नहीं होगी। बताना चाहेंगे कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रत्येक केंद्र में एक सेक्टर और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, दो दो पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। केंद्रों के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बायोमेट्रिक जांच के बाद अभ्यर्थियों को केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर उत्तर सही है तो 2 अंक मिलेंगे। उत्तर गलत होने पर 2 अंक का 1/3 भाग कट जाएगा, यानी माइनस मार्किंग है। अनुत्तरित प्रश्न पर कोई भी अंक नहीं मिलेगा। जिले में 8 से 10 जून तक उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती परीक्षा भी होगी। डीएम के आदेश पर 28 केंद्रों की जांच की गई है। केंद्र में सभी सुविधाएं देखी गई हैं, साथ ही सुरक्षा की भी जानकारी ली गई है। 3 दिवसीय परीक्षा में 76,500 अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा के माध्यम से 32,500 सिपाहियों की भर्ती होगी। एडीएम सिटी यमुनानगर ने बताया कि प्रत्येक पाली में 12,768 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा होगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है साथियों, अगर आप हाथरस रूट पर सफर करते हैं और यदि आपका लगभग प्रतिदिन का आना जाना है तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि फाउंड्री नगर डिपो से कल से चलेंगी हाथरस अलीगढ़ की बसें। साथियों, अगर आप हाथरस या फिर अलीगढ़ जा रहे हैं तो कल यानी 1 जून से आपको आईएसबीटी नहीं जाना पड़ेगा और न ही आपको रामबाग से इस रूट के लिए बस मिलेगी, बल्कि दोनों ही शहरों की बसें यानी हाथरस और अलीगढ़ की बसें आपको फाउंड्री नगर सैटेलाइट डिपो से मिलेंगी। अबुल अल्लाह की दरगाह और वाटरवर्क्स चौराहे पर बसों का दबाव इस वजह से कम होगा और इससे जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। राज्य परिवहन निगम द्वारा आईएसबीटी से हाथरस और अलीगढ़ के लिए 250 बसों का संचालन किया जाता था। ये बसें अबुलुल्लाह की दरगाह, वाटरवर्क्स और रामबाग चौराहा पर रुकती थीं, जिसे देखते हुए 1 जून से व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब बसों का संचालन फाउंड्री नगर सैटेलाइट बस डिपो से होगा, जो कि टेढ़ी बगिया पर स्थित है। अगर कोई भी चालक आईएसबीटी या फिर इसके आसपास के क्षेत्र में बस लेकर आता है तो नियम का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताना चाहेंगे कि दोनों ही शहरों के लिए हर दिन 8,000 से अधिक यात्री सफर करते हैं। और चलिए अब जानकारी आपको देते हैं टैक्स से संबंधित। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इस बार 7 फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। हालांकि वर्तमान में केवल ITR 1 यानी सहज और ITR 2 और ITR 4 यानी सुगम ही फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। ITR 3, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 अभी तक नहीं उपलब्ध होने से करदाताओं, व्यवसायियों, फर्मों और संस्थाओं को रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। आवश्यक फॉर्म उपलब्ध नहीं होने से रिटर्न फाइलिंग में अनावश्यक देरी हो रही है। इससे रिटर्न फाइलिंग का दबाव अंतिम समय में बढ़ सकता है, करदाताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तूफान ने ठंडे किए गर्मी के तेवर। जी हाँ, करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुक्रवार शाम आए तूफान ने गर्मी के तेवर ठंडे कर दिए हैं। शनिवार को आसमान साफ रहने से धूप आंखों को चुभी, लेकिन तापमान कम रहने

से राहत रही। सामान्य से अधिकतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार और सोमवार को आंशिक बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछार पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। आगामी सप्ताह में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहने से गर्मी में राहत रहेगी। शहर में शुक्रवार शाम 7:30 से 8:30 बजे तक तूफान आया था। तेज हवा चलने के साथ ही एक घंटे तक झमाझम वर्षा हुई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 47 mm वर्षा रिकॉर्ड हुई। रात भर हवा चलती रही थी और मौसम ठंडा रहा था। शनिवार सुबह आंशिक बादल छाए रहे थे और सुबह 8 बजे के करीब बादल छटने पर धूप भी निकल आई थी। शुक्रवार शाम आए शहर में तूफान से बिजली आपूर्ति को झटका लगा। जीवनी मंडी, वाटरवर्क्स और गंगाजल प्लांट सिकंदरा की कई घंटे बिजली गुल रही। इससे पंपों का संचालन बंद रहा और इसके चलते शनिवार सुबह पूरे शहर की जलापूर्ति लड़खड़ा गई। दूर दराज के क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचा। शिकायतों के बाद जलकल विभाग की टीम ने टैंकरों से पानी भेजा और शाम को जलापूर्ति ठीक तरह से हो पाई।

जिन किसानों को अपना आलू उत्तर प्रदेश से बाहर भेजना है तो उन्हें रेलवे एक वैगन भी उपलब्ध करा रहा है। पूरी ट्रेन को बुक कराने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए इंटेंट यानी टोकन मनी देकर बुकिंग करानी होगी। आगरा के दो रेलवे स्टेशनों से आलू को बाहर भेजने की व्यवस्था की गई है। ओडिशा, बंगाल, चेन्नई या फिर देश के किसी भी कोने में आपको अपना आलू बेचने के लिए रेलवे के माध्यम से भेजना है तो इसके लिए आपको रेलवे की साइट पर जाकर ऑनलाइन इंटेंट करना होगा, जिससे आपको पूरी डिटेल भरनी होगी। कब और कहां भेजना है, कितने वैगन बुक करने हैं आदि की जानकारी देनी होगी और इसी के आधार पर आपके डिमांड के अनुसार आपको वैगन उपलब्ध हो जाएगा। आप जितना वैगन बुक करना चाहते हैं उतने ही कर सकते हैं। इंटेंट के पैसे को भाड़े से बाद में कम कर दिया जाता है। बताना चाहेंगे कि इंटेंट लगाने के लिए रजिस्टर्ड आईडी द्वारा रेलवे को अग्रिम बुकिंग का भुगतान जीएसटी के साथ करना होता है और इंटेंट लगाने के 10 दिनों के अंदर रेलवे द्वारा रैक व वैगन उपलब्ध कराई जाती हैं। एक वैगन की क्षमता लगभग 45 टन की होती है। आपके बताए रूट की गाड़ी के साथ इस वैगन को जोड़ दिया जाता है। जानकारों के मुताबिक सड़क मार्ग से लगभग 30-40% परिवहन इसमें कम लगता है। समय पर भी आलू पहुंचता है, इसके लिए किसान को पहले ही इंटेंट करना होता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, रविवार यानी आज रजिस्ट्री का दफ्तर खुला रहेगा। निबंधन विभाग 6 रविवार से रजिस्ट्री कार्यालय खुल रहा है। तहसील सदर स्थित उप निबंधक का कार्यालय 31 मई को यानी आज खुलेगा। वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते 19 अप्रैल रविवार से एक रजिस्ट्री दफ्तर खुलने के बाद भी एक भी बैनामा नहीं हुआ था। इस 7वें रविवार को भी बैनामे होने की संभावना नहीं है। वहीं AIG निबंधन ने बताया कि शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है।

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 21907, 21908 यानी मुंबई सेंट्रल, काठगोदाम मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा की है। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से 27 मई से हर बुधवार को और काठगोदाम से 28 मई से हर गुरुवार को चलेगी। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सुबह 10:55 पर चलकर अगले दिन सुबह 5:50 पर मथुरा जंक्शन और दोपहर 1:50 पर काठगोदाम पहुंचेगी। वहीं यही ट्रेन काठगोदाम से शाम 5:30 चलकर रात को 1:05 पर मथुरा जंक्शन और अगले दिन रात को 9:00 मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। रेलवे ने साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। गाड़ी संख्या 04139 और

04140 यानी प्रयागराज दादर के बीच चलने वाली ट्रेन प्रयागराज से 22 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को और दादर से 24 मई से 12 जुलाई तक हर रविवार को चलेगी। ट्रेन प्रयागराज से शुक्रवार शाम 5:10 पर चलकर देर रात 1:20 पर ईदगाह स्टेशन और शनिवार रात 10:40 पर दादर पहुंचेगी। ट्रेन दादर से रविवार को रात 12:15 पर चलकर रात 7:10 पर ईदगाह स्टेशन और अगले दिन सुबह 5 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। तो साथियों, ये थी हमारी अपने आसपास की कुछ खास खास खबरें, कुछ जानकारियां, सूचनाएं। अब हम आपसे बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे एक गीत और उसके बाद चर्चा करेंगे।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562350 1852 और दूसरा नंबर है 0562

0: 2970337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, ब्रेक से पूर्व आपने गीत सुना था दम मारो दम, और ये गीत हमने खास तौर पर आपको इसलिए सुनवाया था कि हम अपने विषय की शुरुआत कर सकें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे परिवार और हमारे समाज की सेहत से जुड़ा हुआ है। आप परिचित हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। हर वर्ष 31 मई यानी आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें इस घातक लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। साथियों, तंबाकू चाहे किसी भी रूप में हो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, थैनी, जर्दा, हुक्का या फिर ई सिगरेट, ये सब शरीर को धीरे धीरे भीतर से नुकसान पहुंचाता है। अक्सर लोग ये सोचकर इसकी शुरुआत कर देते हैं कि बस एक बार या फिर थोड़ा सा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यही छोटी सी शुरुआत कई बार ऐसी आदत बन जाती है, ऐसी लत बन जाती है जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथियों, तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग स्वयं तंबाकू का सेवन नहीं करते वे भी उसके धुएं के संपर्क में आकर अनेक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है तो भी आप खतरे की चपेट में हैं। इसे निष्क्रिय धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, और साथियों इससे बचना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आज युवाओं और किशोरों में भी तंबाकू का प्रयोग बढ़ रहा है। कभी दोस्तों के दबाव में, कभी दिखावे के लिए और कभी तनाव दूर करने के भ्रम में। जी हाँ, ये भ्रम ही होता है कि सिगरेट पीकर या तंबाकू खाकर हम तनाव दूर कर रहे हैं, तो युवा इस आदत की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि तंबाकू तनाव को कम नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे शारीरिक, मानसिक और साथ में आर्थिक समस्याओं को बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है, ये बहुत सराहनीय कदम है, और हम तो चाहेंगे कि आज ही जो भी व्यक्ति इस लत से ग्रसित हैं, आज के दिन इस संकल्प को लें और तंबाकू छोड़ने की शुरुआत करें। तो हम बताते हैं कि जो व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे दृढ़ निश्चय करना होगा। परिवार और मित्रों का सहयोग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंबाकू छोड़ने की शुरुआत एक निश्चित तारीख तय करके की जा सकती है, क्योंकि दृढ़ संकल्प के लिए टारगेट का होना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ साथियों, तो तारीख तय करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और इसके बाद ऐसे वातावरण और संगति से बचना चाहिए जो आपकी इस आदत को बढ़ावा देते हों। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह और परामर्श भी लिया जा सकता है। साथियों, तंबाकू छोड़ने के लाभ बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। कुछ ही समय में शरीर बेहतर महसूस करने लगता है, सांस लेने में आसानी होती है, ऊर्जा बढ़ती है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपने परिवार को भी एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण दे पाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं जीवन अनमोल है और स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तंबाकू क्षणिक आनंद का भ्रम दे सकता है, लेकिन इसके परिणाम

लंबे समय तक कष्टदायी हो सकते हैं। इसलिए आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आइए हम स्वयं भी संकल्प लें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वे तंबाकू से दूर रहें। साथियों, याद रखिए, तंबाकू से दूरी ही समझदारी है, स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज का संकल्प कल की मुस्कान बने और नशा मुक्त भारत हमारा सम्मान बने। साथियों, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक चर्चा हमने आपसे की और इस उम्मीद के साथ की कि इस चर्चा का प्रभाव ऐसे लोगों पर जरूर पड़ा होगा जो इस नशे की लत के शिकार हैं, लेकिन खुद को इस नशे से दूर भी करना चाहते हैं और अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को एक स्वस्थ माहौल देना चाहते हैं। सुनवाते हैं आपको एक गीत जो आपको इसके दुष्प्रभावों के बाद के परिणामों पर सोचने को मजबूर कर देगा।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: और साथियों, अब आपको गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं देते हैं। यह है पहली सूचना जो हमें प्राप्त हुई है थाना प्रभारी थाना बाह जनपद आगरा से।

सूचना है रेशमा के विषय में। रेशमा पत्नी भूरे सिंह निवासी ग्राम तेज सिंहपुरा थाना बाह जनपद आगरा दिनांक 27 अप्रैल 2026 से लापता हैं। रेशमा की उम्र लगभग 21 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 5 इंच रंग गोरा और शरीर सामान्य है। घटना के दिन इन्होंने पीले रंग की छींटदार साड़ी और काले रंग के सैंडल पहने हुए हैं। इनके साथ पहने हुए जेवर और एक मोबाइल भी है। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको मिले तो कृपया थाना प्रभारी थाना बाह जनपद आगरा को सूचित करें।

0: थाना अध्यक्ष थाना ढोकी कमिश्नरेट आगरा से प्राप्त की अगली सूचना है मनोज के विषय में। मनोज पुत्र हरपाल सिंह निवासी पूरा मलखान खुर्द थाना ढोकी जनपद आगरा दिनांक 3 जुलाई 2025 से लापता हैं। इनको काफी तलाश किया गया है परंतु अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मनोज की उम्र लगभग 40 वर्ष है। इनका रंग गोरा है। लंबाई करीब 5 फुट 6 इंच है। चेहरा लंबा है और दोनों पैरों की चौथी नंबर की उंगली पैर की छोटी उंगली के बराबर है। इनके दाहिने हाथ के कंधे पर त्रिशूल के साथ सांप गुदा हुआ है और बाएं हाथ पर अंग्रेजी में MP गुदा हुआ है। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको प्राप्त हो तो कृपया थाना अध्यक्ष थाना ढोकी जनपद आगरा को सूचित करें। थाना पिनाहट से प्राप्त यह सूचना है सुमन देवी के विषय में। सुमन देवी पत्नी राम खिलाड़ी निवासी आरडी पब्लिक स्कूल के पास थाना पिनाहट आगरा दिनांक 27 अप्रैल 2026 से लापता हैं। सुमन की उम्र लगभग 53 वर्ष है। कद 4 फुट 5 इंच और एक गहरा शरीर है। घटना के दिन इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनके बारे में कोई सूचना हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना पिनाहट जनपद आगरा को सूचित करें। इस सूचना के साथ ही आज का आसपास कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आसपास। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल

0: शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा इनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा

0: है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the

0: products. And finally, Times of India in a photo caption, Dhool Andar sweeps Rajasthan. Reports on the massive dust storm that barreled through several parts of Rajasthan, plunging several towns into darkness around 2 p.m. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ल्हांग अपने पांच रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
3: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
2: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ल्हांग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर

0: उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राब्तों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बुहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वाह घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की औसत बैनुल अक्वामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायजा लिया जाता है। ताहम हुकूमत ने वाजे किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजरसानीशुदा ड्यूटीज का कल से इतलाक होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है, तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तई बेदारी पैदा करना है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे के लिए आलमी इदारे सेहत WHO की आलमी पहल है। इस साल के तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन का उन्वान है निकोटीन और तंबाकू की लत से निमटना। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन मनाए जाने के हिस्से के तौर पर मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जुमे के रोज नई दिल्ली में तंबाकू से पाक तालीमी इदारों टॉफी ऐप का पायलट वर्जन लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुखालिफ जाब्तों की निगरानी और निफाज को मुस्तहकम करना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क भर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष इदारों और दीगर सेहत देखभाल मराकज में 2000 से ज्यादा तंबाकू नोशी मुखालिफ मराकज कायम किए गए हैं। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम नस्ब किए जाने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसे जदीद मौसमियाती निजाम कोहरे और खराब मौसमी हालात के दौरान परवाजों की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर के मजीद हवाई अड्डों तक तोसी दी जाएगी, जिससे मुसाफिरों के सफरी तजर्बे को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा और सेफ्टी में इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने के सानेहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। मरने वालों में 7 अफराद का ताल्लुक पुणे शहर से और 14 अफराद का ताल्लुक पेचरी, चिंचोड़ और उरवली कंचन इलाकों से है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी CID को सौंपी गई है। इस मामले में बड़ी इंतजामी कार्रवाई करते हुए 22 अहलकारों को अपने फराइज के अंजामदही में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने पर मौतल कर दिया गया है। मौतल किए गए अहलकारों में 9 पुलिस अहलकार और रियासती आबकारी महकमे के 13 अफसरान शामिल हैं। जम्मू

0: कश्मीर की वजीर सकीना इट्टू ने जम्मू डिवीजन के समर जोन के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 1 जून से 15 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। मोहतरमा इट्टू ने कहा कि जारी मौसम गर्मा के तनाजुर में यह फैसला लिया गया है ताकि तलबा तदरीसी अमले और कॉलेज अमले की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मेल हासिल किया गया है। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि एक मरबूत मुश्तरका तरीकेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निजाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा है कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रेयासिस ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद कर देने वाले ममालिक से इन इकदाम पर दोबारा गौर करने की अपील की है। जनाब गेब्रेयासिस का कहना है कि इस तरह के इकदाम बीमारी से निमटने की कोशिशों में रुकावट बन सकते हैं। मशरकी कांगो के बुनिया में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गेब्रेयासिस ने कहा कि बुनिया के उनके दौरे का मकसद मुतासर बिरादरियों के साथ सीधे तौर पर मसरूफ अमल होना है और सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में बीमारी से निमटने की कोशिशों को मुस्तहकम करने में मदद करना है। जमहूरिया कांगो के सेहत हुकाम ने 900 से ज्यादा मुश्तबा इबोला मामलों में 200 से ज्यादा मुश्तबा अमवात रिपोर्ट की हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा ने राजधानी कंपाला में नए इन्फेक्शन समेत मजमुई तौर पर 9 मामलों की तस्दीक की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ मकाम पर आज छींटे पड़ने के साथ झालाबारी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ मकाम पर कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती एजेंसी ने अगले 2 दिन के दौरान राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की भी पेशगोई की है। केरलम में शदीद बारिश के इम्कान के तहत 6 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता केरलम में बाजाब्ता तौर पर मॉनसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। RCB ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटंस ने लीग मरहले में टॉप 2 में जगह हासिल की और क्वालिफायर 1 में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इंतजार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कामे क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर UEFA चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने जरात और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम यकुम जून से चलाई जाएगी, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफे पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047

0: मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मईशत मजबूत मगर एहतियात जरूरी। वजारत खजाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत खजाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मईशत के करीबी मुस्तकबिल को मजबूत करार दिया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंगलियांग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा।

मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण। सुबह के 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का पहला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में।

शैलेंद्र सिंह की आवाज में अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम था बॉबी। कार्यक्रम के अगले गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत शिव हरी का, और फिल्म का नाम है सिलसिला।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं कारवां फिल्म से। मजनू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। गीत को गाया है लता मंगेशकर और सखियों ने।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाए और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम गीतांजलि सुन रहे हैं आप आकाशवाणी आगरा से। आइए सुनते हैं अगला गीत रूना लैला और भूपिंदर की युगल आवाजों में। जयदेव के संगीत से सजे इस गीत को लिखा है गुलजार ने और फिल्म का नाम है घरुंदा।

रूनालला और भूपेंद्र की आवाजों में आपने सुना घरौंदा फिल्म का गीत। अगले गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत गुलशन बावरा का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है हाथ की सफाई।

हाथ की सफाई, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। अगले गीत में लता मंगेशकर और साथियों को आप सुनेंगे। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है जिसे संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है कारवां।

आपने सुना कारवां फिल्म का गीत, उससे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फर्ज फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का गीतांजलि कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं, जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सुशील जी।
2: जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला, ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे?
3: नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई 2017 में, बहुत पहले से ये पेंडिंग पड़ा था, पिछली सरकारें लाना चाहती थी लेकिन किसी वजह से नहीं ले पाई। दूसरा एक वैश्विक एक कोरोना काल आपने देखा। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिपेक्ष में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था, बिजनेस को और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पर, जैसे मैंने कहा कोविड 19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हों चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से पिचपिका को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे क्वाड बना है, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के पूरे पैराडाइम को देखते हुए बनाया गया, खासतौर से चाइना को कैसे कंटेन करना है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसको कैसे लेके जाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, हमेशा भारत कहीं ना कहीं टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला है। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑल

0: क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेके जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तरह की बात है, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है लेकिन सिक्योरिटी मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं उसमें एआई का किस तरह से यूज हो रहा है, उस परिपेक्ष में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि एआई से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है, जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्टेट है इंडिया का और करीब 10% के आसपास का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से एआई को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जिससे ना केवल हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके, बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।
1: जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के आपने एआई की बात की, पढ़ाई को लेकर के ये क्या क्या चेंजेस हुए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लगभग 500 के आसपास जो है नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विश्वविद्यालय हैं। एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में वहां तक दूर दराज तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके इनके लिए काम हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की। किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एक्सप्रेस वे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है मुंबई में, दिल्ली मुंबई कनेक्टिविटी, खासतौर पर सीमा के क्षेत्रों में। जिन चुनौतियों की आपने चर्चा की उसमें बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि करगिल युद्ध के बाद पहली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले गलवान हुआ था, तो इस नाते सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं?
0: देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई है, वहां पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी है, एक्सप्रेस वेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे ना केवल एक्सप्रेस वेज बल्कि जो टर्शियरी रोड्स हैं जो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी बनती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेस वे है वो एनएचआई बना रहा है, अभी कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं। बहुत सारे आपने देखा एप्पल का प्लांट इंडिया में आया है, सैमसंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके नोएडा में लगा हुआ है, इसी तरीके के अन्य क्षेत्रों में एआई को लेके भारत की जो कंपनियां अग्रणी कंपनियां हैं विदेशी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं होगा अच्छा तब तक इन्वेस्टर जो है किसी भी उसको बाईपास कर देता है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी बुलिश रही है और काफी अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम होगा।
1: जी, और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट उसके अंदर जो है वो बन चुके हैं। हर घर जल की अगर बात करें 15 करोड़ से ज्यादा देश भर में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो एक बहुत गेम चेंजर योजना थी वो पीएम आवास योजना भी, 4 करोड़ से ज्यादा घर उसके तहत जो है वो पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं। मुद्रा योजना के तहत जो है 50 करोड़ से ऊपर का लोन दिया जा चुका है। तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन अंत में जो मैं आखिरी सवाल

0: से करूंगा कि देश के युवा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई, सरकार ने शिक्षा नीति में पूरी तरीके से बदलाव करने की कोशिश की। युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला।
1: देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है, और इस समय इंडिया और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप को लेके, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक जो जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, ना केवल जॉब मार्केट, सारे भी डोमेन्स को डिसरप्ट कर रहा है। खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जुड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है, आपने देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है। और युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया, बहुत सारी स्कीम्स है एमएसएमई को लेके कि कोलैटरल फ्री लोन कैसे देना है, स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं। क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य हैं, तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे, तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है वो भी एक सही पाथ पे चलेगी।
0: जी वीरेन जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 9:26 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजुषा। कार्यक्रम का पहला गीत गीता दत्त की आवाज में, गीत मजरों का, संगीत ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

गीता दत्त का गाया गीत अभी आपने सुना। इस गीत में आपका साथ दे रही थी सखियां। कार्यक्रम के अगले गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है एसडी बर्मन।

गीता दत्त का गाया गीत अभी आपने सुना। इस गीत में आपका साथ दे रही थी सखियां। कार्यक्रम के अगले गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है एस डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है 9-2-11।

आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया था एसडी बर्मन ने। आइए एक बार फिर सुनते हैं एसडी बर्मन का संगीत, जिस पर बोल लिखे हैं सहर लुधियानवी ने। मुनीम जी फिल्म के इस गीत में आवाजें हैं गीता दत्त, हेमंत कुमार और ठाकुर की।

शोला और शबनम। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत के बोल कैफे आजमी के थे और धुन बनाई थी खयाम ने। ओपी नायर के संगीत से सजा है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। बोल साहिर उद्यानवी के हैं। फिल्म नया दौर और गीत में आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

नया दौर फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत सहर लुधियानवी का था और संगीत ओपी नैयर का। इस गीत के साथ ही आज का गीत मंजूषा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं राजेंद्र शुक्ला। आइए सुनते हैं आपके द्वारा प्रस्तुत ब्रज लोक गीत।

लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। कलाकार हैं राजेंद्र शुक्ला। आइए सुनते हैं अगली प्रस्तुति जिसकी बोल है गंगा मैया पे तरस नक खाओ।

0: आप सुन रहे थे राजेंद्र शुक्ला की आवाज में ब्रज लोकगीत। इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम आप समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए लेते हैं एक अंतराल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

आपने सुना शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल का गाया गीत। अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर सरिता आकाशवाणी आगरा से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में एस एच बिहारी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

आइए सुनते हैं सुरसरिता कार्यक्रम का अगला गीत आवारगे फिल्म से। गीत में आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की हैं। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत अनु मलिक का।

लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का गीत। वर्मा मलिक के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था उत्तम जगदीश ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आवारगी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीत आनंद बख्शीकार, संगीत अनु मलिक।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज के गाए आवारगी फिल्म के इस गीत के साथ ही सुर सरिता कार्यक्रम आप समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन AI।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सितार वादन, कलाकार हैं अरविंद मसीह। आप प्रस्तुत करेंगे राग विभास और राग तोड़ी। आइए आरंभ में सुनते हैं सितार पर बजाया राग विभास।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे राग विभास में सितार वादन। कलाकार थे अरविंद मसीह। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं अरविंद मसीह का राग तोड़ी में सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे राग तोड़ी में सितार वादन, कलाकार थे अरविंद मसीह। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 10:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के

0: सामान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
2: कोई बोले राम राम।
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किट बैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
4: चले
5: ले आ गया नया किट बैग।
6: आरबीआई कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं।

0: और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदरवीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदरवीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदरवीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी।

0: करती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही, कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है।

0: और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना

एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल

डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर

जौहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये

0: विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव

श्रोताओं, लोकमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं प्रेम कुमार शर्मा के गाए कुछ ब्रजलोक गीत।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे प्रेम कुमार शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोकमंजरी अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय दिन के 12:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने इस छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और के की आवाजों में इरशाद कामिल की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। फिल्म का नाम था आहिस्ता आहिस्ता। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं के राणा मजूमदार और सूरज की आवाजों में फिल्म बिल्लू बार्बर का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे के राणा मजूमदार, सूरज और साथियों की आवाज़ों में फिल्म बिल्लू बार्बर का ये गीत। गीत को लिखा

था नीरज श्रीधर ने, संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। श्रोताओ, कार्यक्रम नई तरह ने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अगला गीत सुनते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे तुलसी कुमार और केके की आवाज़ों में नीलेश मिश्रा की शब्द रचना को, धुन बनाई थी प्रीतम ने, फिल्म का नाम था रेडी। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं सोनू निगम, कुणाल कांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म पार्टनर का ये गीत। गीतकार हैं शब्बीर अहमद, संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म पीके का ये गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नई तराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न

0: इन डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani today, Mr. Modi said that three rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
0: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले।

0: इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: In his Mann Ki Baat program, the Prime Minister talked about the recently held National Senior Athletics Federation competition in Ranchi, Jharkhand, where nearly 800 athletes participated. He congratulated Gurinder Veer Singh, Vishal TK, Tejaswin Shankar, Dev Meena and Kuldeep Kumar for breaking 4 national records in different events. In his address, Prime Minister Modi also appreciated the efforts of Saji Valasheril of Aluva in Keralam, who runs a swimming club with no fees in which more than 15,000 people have learned to swim. 3 persons lost their lives after a commercial building collapsed near Saket metro station in South Delhi last evening. 5 persons are undergoing treatment at the hospital, while 3 have been discharged after receiving treatment. Meanwhile, Chief Minister of Delhi Rekha Gupta visited the incident site in South Delhi and reviewed the ongoing relief and rescue operations. In a social media post, the CMO informed that rescue teams have been continuously engaged in operations since last night. Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media after taking over command, Admiral Swaminathan said that the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interest and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable and uncertain. Chief of Defence Staff CDS Lieutenant General N.S. Rajasubramani has said that innovation in thought and action will drive the development of military capabilities. Addressing the media after assuming charge as the country's new CDS, General Subramani emphasized that greater collaboration among the armed forces, industry, academia, startups, and the research ecosystem would be the key enabler of modernization. U.S. President Donald Trump has said the United States isn't close to reaching a nuclear agreement with Iran, but warned that military action remains an option if negotiations fail. In an interview with a private news channel at the White House, Trump said his administration's priority is ensuring that Iran never obtains a nuclear weapon. And in IPL cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of the 2026 season in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: पहुंचाए करोड़ों तक।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
4: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को शदीद गर्मी के मौजूदा मौसम में बेहद एहतियात बरतने के साथ सरकारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से ज्यादा मकदार में पानी पीने और धूप से बचाव के तरीके इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मियों के साथ साथ आम का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी के लंगड़ा के साथ हर इलाके के आम का जायका अनोखा और उसकी महक सौंधी होती है। उन्होंने कहा कि आम हमारी ज़रई मईशत के लिए भी बहुत खास है। वज़ीरे आज़म ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे मुहिम के तहत बनाई गई हिंदुस्तान की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें खुसूसी रोल अदा किया है।
0: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते।
4: वज़ीरे आज़म ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया।
0: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी हो, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में

0: प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गए।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तरगीब देता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि आप सभी अपने आसपास की जा रही ऐसी कोशिशों को जरूर देखें और जो लोग मुआशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सताइश कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। फर्टिलाइजर के तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल को फरोग देने के लिए एक महीने की खेत बचाओ मुहिम कल से शुरू होगी। मरकजी वजीर बराए ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस मुहिम को कौमी मुहिम बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुहिम का खास मकसद फर्टिलाइजर का तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल, मौसम के चैलेंजेस के मद्देनजर किसानों को वक्त पर मशवरा, पंचायत सतह पर किसानों की शराकत दारी और गांवों को बराए रास्त स्कीम के फायदे पर मरकूज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और इत्तलात तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। जनाब वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और दीगर खसूसी मादनी और एडवांस्ड अशिया का प्रोडक्शन कर रहा है। पूरी रियासत में आज उत्तर प्रदेश मुश्तरका बीएड दाखिला इम्तिहान 2026 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान में 72 इजला में कायम 1011 इम्तिहान मराकज पर कुल 4,44,958 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। यह इम्तिहान दो मीटिंगों में मुनक़िद हो रहा है। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इम्तिहान के मद्देनजर इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इम्तिहान मराकज की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% एडिशनल फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज नाफिस करने का फैसला किया है। अगले महीने सार्फीन को अपने बिजली बिल में 10% ज्यादा अदायगी करनी होगी। आज आलमी नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से आलमी सेहत तंजीम के जरिए शुरू की गई खसूसी आलमी पहल का हिस्सा है। इस साल का मौजू है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। और रियासत के बेशतर अजला में तेज हवाएं चलने और बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और आवाम को गर्मी से निजात मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक और बारिश होने की खबर है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 56 अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन अजला में खसूसी तौर से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बरेली, हमीरपुर और महोबा शामिल। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:15 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं नन्हे मुन्ने श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडल।

हंसी की पोटली, सपनों की उड़ान और सीख की नई पहचान। बाल मंडल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा और अब शुरू होता है हमारा प्यारा सा सफर, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे खजाने की जो ना बाजार में मिलता है ना किसी मेले में, लेकिन अगर ये हमारे पास हो तो जीवन खुशियों से भर जाता है। और वह खजाना है अच्छी आदतें और अच्छी सेहत। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, पहला सुख

0: रोगी काया, दूजा सुख घर में माया। यानी अगर शरीर स्वस्थ हो तो हर खुशी अच्छी लगती है। लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में मोबाइल, जंक फूड और आलस ने हमारी अच्छी आदतें छीन ली हैं। क्या आप जानते हैं, सुबह देर तक सोना, बिना हाथ धोए खाना खाना, घंटों मोबाइल देखना, ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारी सेहत को खराब कर देती हैं। लेकिन अगर हम कुछ अच्छी आदतें अपना लें तो हम हमेशा चुस्त और खुश रह सकते हैं। तो ये अच्छी आदतें क्या क्या हैं, चलिए जानते हैं। सुबह जल्दी उठना, दूध और पौष्टिक खाना खाना, पढ़ाई करना, रोज ब्रश करना, खेलना कूदना और समय पर सो जाना। चलिए एक कहानी के माध्यम से ये जानते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राहुल और मोहन। राहुल सुबह जल्दी उठता, व्यायाम करता, घर का खाना खाता और मोहन वह देर रात तक मोबाइल चलाता, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीता रहता। कुछ महीनों बाद राहुल हमेशा की तरह तंदुरुस्त और खुश रहता, जबकि मोहन जल्दी थकने लगा, बीमार रहने लगा। तब मोहन को समझ आया कि अच्छी आदतें ही अच्छी सेहत का असली खजाना है। हमारे घर में हमारी माताएं, हमारी बहनें पूरा परिवार संभालती हैं, लेकिन अक्सर वे अपनी सेहत को पीछे छोड़ देती हैं। तो याद रखिए, घर की रौनक तभी रहती है जब घर की लक्ष्मी स्वस्थ रहती है। दिन भर काम के बीच थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें, सुबह थोड़ी सी सैर करने जाएं, हल्का योगा करें, समय पर खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिए। ये छोटी छोटी बातें हमें बड़ी बीमारियों से बचाती हैं। और सबसे ज़रूरी, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने की शुरुआत घर से ही होती है। यदि हम फल खाएंगे तो बच्चे भी चिप्स को छोड़कर फल की तरफ जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, मोबाइल थोड़ा कम चलाएं और मैदानों में खेलने जाएं। सेहत से बड़ा कोई धन नहीं होता, अच्छी आदतों का कोई मोल नहीं होता। जो खुद का ध्यान रखना सीख जाता है उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता। तो चलिए आज से एक छोटा सा वादा करें कि हम समय पर खाना खाएंगे, साफ सफाई रखेंगे, रोज व्यायाम करेंगे और मोबाइल थोड़ा कम चलाएंगे। क्योंकि अच्छी आदतें जीवन का श्रृंगार हैं और अच्छी सेहत खुशहाल परिवार का। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं और लेते हैं अंतराल।
1: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो इस अंतराल के बाद चलिए सुनते हैं मनोरंजन के लिए गीत।

तो चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े और छोटे देश के बारे में। बच्चों, हमारी दुनिया कितनी रंग बिरंगी और कितनी अनोखी है ना। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं विशाल समुद्र, कहीं लाखों लोगों की भीड़, तो कहीं इतना छोटा देश कि कुछ ही मिनटों में पूरा घूम लिया जाए। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक मज़ेदार और ज्ञान से भरी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े देश और सबसे छोटे देशों के बारे में। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा होगा? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, यानी कि रूस। इतना बड़ा कि वहाँ एक जगह दिन होता है तो दूसरी जगह रात। रूस दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। वहाँ बहुत ठंड पड़ती है और कई कई जगहों पर तो बर्फ ही दिखाई देती है। अगर कोई बच्चा रूस में स्कूल जाने निकले और रास्ते में सिर्फ बर्फ दिखाई दे तो कितना मज़ा आएगा ना। दुनिया कितनी न्यारी है, हर देश की अपनी प्यारी कहानी है। कहीं बर्फ ही बर्फ तो कहीं रेगिस्तान, यही तो धरती की है पहचान। तो अब हमने दुनिया के सबसे बड़े देश के बारे में तो बात कर ली, अब जानते हैं सबसे छोटे देश का क्या नाम है। उसका नाम है वेटिकन सिटी। ये देश इतना छोटा है कि कई लोग तो पैदल ही घूम लेते हैं। ये रोम शहर के अंदर बसा हुआ है।

यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी ये देश पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? बड़ा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है खास होना। जैसे हर देश की अपनी पहचान होती है, वैसे ही हर घर में अपनी एक खूबसूरती छुपी होती है। किसी का घर बड़ा होता है, किसी का छोटा, लेकिन प्यार और अपनापन अगर हो तो छोटा घर भी दुनिया का सबसे सुंदर घर बन जाता है। रूस इतना बड़ा है कि वहाँ 11 अलग अलग टाइम जोन है, और वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल इतना छोटा है कि कई पार्कों से भी वो छोटा माना जाता है। दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहाँ साल के बाद कुछ दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं। धरती पर फैले कितने देश, सबकी अलग विशेषता, कोई बड़ा कोई छोटा, पर हर देश दिल को भाता। दुनिया बहुत बड़ी है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। यदि किताबों से दोस्ती कर ली जाए तो नई जगहों के बारे में आप जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही हमें समझदार और एक अच्छा इंसान बनाता है। तो बच्चों, आज हमने जाना दुनिया के सबसे बड़े देश रूस और सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के बारे में। उम्मीद है आपको ये ज्ञान भरी यात्रा पसंद आई होगी। दुनिया को जानना है आसान, बस सीखने का रखिए खास ध्यान। तो चलिए, अब थोड़ा सा आपका मनोरंजन करवाते हैं इस गीत के साथ।

0: बच्चों, हम सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है, लेकिन क्या हर गलती की सज़ा मिलनी चाहिए? और अगर मिले तो क्या वह हमें कुछ सिखा भी सकती है? तो चलिए इसी बात को समझते हैं आज की रोचक कहानी सज़ा के माध्यम से, जिसकी कहानीकार है वंदना तुली।
1: मोहन एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धनी परिवार का लड़का था। उसके पिता शहर के जाने माने वकील थे। पैसा होने के कारण मोहन के पिता ने मोहन के स्कूल में बहुत सी चीजें बनवाई थीं। मोहन के पिता को अपने धनवान होने पर बहुत घमंड भी था। एक बार की बात है, स्कूल में परीक्षाएं नजदीक थीं और सबसे पहले गणित की परीक्षा थी। मोहन को लगता था कि वो अपने पिता के पैसों और प्रतिष्ठा की ताकत से पास हो जाएगा, इसलिए उसने परीक्षा से पहले बहुत मौज मस्ती की, बहुत सैर सपाटे किए। परीक्षा में मोहन को कुछ भी नहीं आया। आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी मोहन से पहला सवाल भी हल नहीं हुआ। मोहन अंदर ही अंदर कांपने लगा, क्योंकि फेल होना बहुत बड़ी बेइज्जती थी। मोहन ने एक चिट लिखकर पास वाले लड़के के पास खिसका दी, जिसमें उसने लिखा था, मुझे सवाल नहीं आता, अपनी नकल कर लेने दो। वो बेचारा भला लड़का था। मास्टर जी की निगाह बचाकर उसने अपनी कॉपी इस तरह रख दी कि मोहन सब कुछ देख सके। मोहन तेजी से नकल करने लगा। इस काम में मोहन इतना डूब गया था कि उसे किसी दूसरे का ध्यान तक ना रहा। तभी अचानक मोहन की गर्दन पर किसी का हाथ पड़ा। गणित वाले मास्टर जी का हाथ था ये। क्या कर रहे हो? उन्होंने तेज स्वर में पूछा। मोहन कांपने लगा। उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा, उसकी कॉपी ली और मोहन की भी।

0: दोनों का मिलान किया और ये सब इतनी फुर्ती से, इतनी खामोशी से किया गया कि कक्षा के दूसरे लड़कों का ध्यान भी नहीं गया। मोहन शर्म और तिरस्कार से जैसे जमीन में गड़ गया। डर के मारे कांपता हुआ मोहन उठा और उनके पीछे पीछे बाहर चला आया। कक्षा के बाहर कोई मोहन को देख ना ले, इस तरह वे उसको ले गए और एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, नकल करते हो? रोते रोते मोहन ने कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। उन्होंने मोहन को अंदर भेज दिया। मोहन समझ गया कि दूसरे लड़कों के सामने वे उसे बेइज्जत करना नहीं चाहते थे। मन ही मन मोहन ने कृतज्ञता अनुभव की, पर उसका मन दिन भर कुड़ता रहा, जलता रहा और सोचने लगा कि पता नहीं ये मेरे गुनाह की वजह से था या मुझे दी गई सजा के कारण। लेकिन उस रात पिताजी ने मोहन से पूछा, क्यों, आज गणित का पेपर कैसा हुआ? मोहन ने कहा, सवाल तो सभी आते थे मुझे, पर मास्टर जी ने बिना वजह मुझे कक्षा में परेशान किया, इसलिए मैं उलझन में पड़ गया। पिताजी ने कहा, अच्छा, किसने परेशान किया, कैसे किया? मोहन ने पिताजी से झूठ बोल दिया और कहा, ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचा मारा। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, बिना बात मारा? हाँ बिल्कुल। अब तो पिताजी का चेहरा तमतमा उठा। अगले ही दिन पिताजी ने गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया। ये जानकर मोहन बहुत खुश हुआ और सोचा कि जो हुआ ठीक हुआ, वे इसी योग्य थे। इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए थे। मोहन स्कूल से कॉलेज में चला गया और नौकरी जाने के बाद मास्टर जी को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। बाद में स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया और मोहन के पिताजी का भी देहांत हो गया। तब उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया क्योंकि वे बड़े ही विद्वान अध्यापक थे। जानबूझकर निर्दोष अध्यापक जी के साथ उन दिनों मोहन ने जो अन्याय किया था, आज बड़ी कंपनी में काम करते हुए उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ तो अचानक उसे मास्टर जी की याद आ गई। अध्यापक जी को उस वक्त कैसा लगा होगा, मेरे बारे में उन्होंने कितना गलत सोचा होगा। मेरे पिताजी ने जब उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था तब उन पर कितना गलत आरोप लगाया गया होगा। ये बातें सोचते सोचते शर्म से मोहन का मन परेशान हो गया। मोहन उनसे माफी मांगने उनके गांव चल पड़ा। उनके घर का दरवाजा खटखटाते ही एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनका चेहरा झुर्रियों के बावजूद चमक रहा था। मोहन ने धीरे से कहा, नमस्कार सर। मास्टर जी मोहन को गौर से देखने लगे लेकिन वे मोहन को पहचान नहीं पाए। सर, मुझे पहचाना? आपने मुझे पढ़ाया था। लेकिन उन्हें तो कुछ याद ही नहीं था। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम मुझसे पढ़ते थे, किस वर्ष? अब कुछ याद नहीं रहता, अब उम्र ढल गई है ना, बहुत कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा। मोहन एक कंपनी में मैनेजर था। लोग जिसे सफलता कहते हैं वो मोहन ने प्राप्त तो कर ली थी लेकिन उसी क्षण मोहन को लगा कि बहुत कुछ मैंने प्राप्त नहीं किया। सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती हैं जीवन में जो मोहन प्राप्त नहीं कर सका। मोहन का मन उदास हो गया और सोचने लगा, जिन्हें मैं याद नहीं उनसे क्षमा कैसे मांगूं? उनके मन में, उनकी यादों में मेरा नाम तक नहीं। एक सज्जन और सच्चे इंसान की यादों में से पूरी तरह हट जाना कोई मामूली सजा नहीं। उसके किए कर्मों की असली सजा तो उसे अब मिल रही थी, जो उस समय मारे गए थप्पड़ से भी बढ़कर थी।
1: बच्चों, गर्मी का मौसम है, अपने साथ आम, तरबूज और छुट्टियों की खुशहारी तो लेकर आता है, लेकिन साथ ही एक खतरा भी लेकर आता है, वो है लू का खतरा। आज हम बात करेंगे कि लू क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। बच्चों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दोपहर में जब हम बाहर निकलते हैं तो जैसे कि कोई गर्म हवा का ब्लोअर चला दिया हो? बस यही गर्म हवा लू कहलाती है। जब शरीर बहुत अधिक गर्मी

सहन नहीं कर पाता तो सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी, उल्टी और तेज बुखार जैसी समस्याएं होने लगती हैं। एक दिन की बात है, छुट्टियों में सोनू अपने दोस्तों के साथ दोपहर 1 बजे क्रिकेट खेलने चला गया। मम्मी ने कहा, बेटा धूप बहुत तेज है, शाम को खेल लेना। लेकिन सोनू ने बात नहीं मानी। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे, सिरदर्द होने लगा और वह बहुत थका हुआ महसूस करने लगा। तब उसकी दादी ने उसे ठंडा पानी पिलाया, आराम कराया और समझाया, बेटा गर्मी से लड़ाई नहीं समझदारी करनी चाहिए। उस दिन के बाद सोनू हमेशा सुबह या शाम को ही खेलने लगा। तो बच्चों, लू से बचने के कुछ आसान उपाय हैं। घर से निकलने से पहले सिर पर टोपी, दुपट्टा या छाते से ज़रूर रखें। खूब पानी पिए, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और नारियल पानी का सेवन अवश्य करें। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कहीं बाहर ना निकलें और खाली पेट तो धूप में बिल्कुल भी ना जाएं। हमेशा पर्याप्त पानी पिएं और फल ज़रूर खाएं, क्योंकि स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ जीवन का पहचान है। धूप चाहे कितनी भी तपी हो, आसमान में सावधानी रखो अपने अरमान पे। पानी, छाया और संयम का साथ रखो, सेहत रहेगी हमेशा मुस्कान में। तो गर्मी से डरने की नहीं, समझदारी से उसका सामना करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ अब आपसे लेती हूँ मैं विदा, कहती हूँ अलविदा। अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रीता गांगुली की गाई चंद गजलें।

श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं रीता गांगुली की गायी चंद गजलें।

अभी आप सुन रहे थे रीता गांगुली की गाई चंद गजलें। इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर

0: के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों,

0: अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं नाटक अधूरा स्वप्न। लेखक हैं आर बी सक्सेना।

0: मालिक।
1: हाय हाय।
2: खोलो शिवाली, दरवाजा खोलो भाई।
3: मिल गई फुर्सत, सुबह के गए अब आ रहे हो, सूरज ढले। मिल का डलुआ आया था, बोल रहा था शहर से सेठ जी आए हैं।
2: क्या कहा?
3: तीसरा फेरा हो गया है उसका।
2: डलुआ चौकीदार?
3: हाँ वही मुनीजर का पिट्ठू, बोला जैसे ही आ जाएं भेज देना।
2: कुछ बता रहा था क्या?
3: मैंने पूछा नहीं।
2: अच्छा तो पहले होकर आता हूँ।
3: बस फिर चल दिए, आखिर घर की भी कोई चिंता है या नहीं? 3 दिन से राजू बीमार है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आखिर मैं पूछती हूँ।
2: अरे भाई थोड़ा आहिस्ता बोलो ना, कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ वो रामू की दवा मंगाई थी क्या?
3: घर में बहुत रोकड़ लाकर रख दी थी ना तुमने, जो दवाई मंगा लेती।
2: क्यों, वो 100 रुपए जो तुम्हें दिए थे?
3: उन 100 रुपए की बात कर रहे हो?
2: हाँ।
3: जानते हो 2 हफ्ते हो गए हैं दिए हुए, क्या अभी तक ऐसे ही रखे रहते? पेटों में ताले लगा दूं? सारा सामान खत्म हो गया है, अरे कल से रोटी कैसे बनेगी, दवाई की तो बात ही दूर रही।
2: घबराओ मत शिवाली, सब भगवान पूरी करेंगे।
3: भगवान पूरी करेंगे, जैसे भगवान आंगन के पेड़ को हिलाकर सारी चीजें बरसा देंगे। अरे काम धंधे की सोचो, नहीं तो फाकों पर पड़ने की नौबत आ जाएगी, समझे? खरी बात सबको बुरी लगे है, मैं तो अभी कहूँ।
2: शिवाली जरा सा संकट में घबरा गई, बाहर जाकर देखो तो पता चले तुम्हें।
3: खरी मैं देख रही हूँ, देखो रामू की दवाई नहीं आई तो।
2: देखो शिवाली इसी दिन के लिए कमाया जाता है, जब तक हाथ पैर सलामत है तब तक कोई नहीं मार सकता। और फिर देखो ना, मैंने शाम का धंधा वो सब कुछ छोड़ दिया है ना।
3: मिलेगी नहीं तो पियोगे क्या?
2: शिवाली ऐसा करो कि वो सुबह बनी के पास जाकर
3: वो

0: एक ही चीज तो बचा कर रखी है। ठीक है जब तुम कहते हो तो, मगर मगर फिर आगे क्या होगा?
1: सब दिन एक जैसे नहीं होते शिवाली, रहा आगे का फिर देखी जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ सेठ जी के पास, पता नहीं क्यों बुलाया है।
0: ऐसे ही चले जाओगे? थोड़े हाथ मुंह ठीक कर लो, तब तक जो कुछ बचा खोचा है मैं ले आती हूँ।
1: सुनो मुझे भूख नहीं है।
0: भूख नहीं है? आखिर तुम सुबह की चाय ही तो पीकर गए थे और सारे दिन इधर उधर मारे ही तो फिरे होगे। देखो दोनों वक्त मिलने वाले हैं, थोड़ा कुछ खा पी लो।
1: नहीं वो मैंने मीटिंग में थोड़ा कुछ खा पी लिया। अरे सुनो तुमने भी?
0: हाँ मैंने भी।
1: नहीं सरासर झूठ, तुम मेरे बगैर खा ही नहीं सकती।
0: तभी तो कहती हूँ कि थोड़ा कुछ।
1: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, जो कुछ भी है आराम से बैठकर खाएंगे। मैं इधर गया और

0: हाँ मैंने भी।
1: नहीं, सरासर झूठ, तुम मेरे बगैर खा ही नहीं सकती।
0: तभी तो कहती हूँ कि थोड़ा कुछ।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जो कुछ भी है आराम से बैठकर खाएंगे। मैं इधर गया और उधर आया, ठीक है ना?
0: हाँ ठीक है।
2: नमस्ते सेठ जी।
3: नमस्ते नमस्ते, आइए चौधरी हरकेश सिंह। मैं और ये बेचारे मैनेजर साहब दोनों ही आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं
2: जी।
3: आइए आइए, इधर इधर बैठिए चौधरी साहब सोफे पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया सेठ जी, चौधरी नहीं केवल हरकेश सिंह कहिए।
3: अच्छा भाई, जैसा तुम कहो।
2: सेठ जी, आपने मुझे याद किया था, हुक्म कीजिए।
3: कैसी बातें करते हो चौधरी हरकेश सिंह भाई, मन नहीं लग रहा था, सोचा तुम लोगों के बारे में पूछ लूं।
2: जी धन्यवाद।
3: अच्छा पहले ये बताओ, ठंडी बियर विस्की लोगे या?
2: नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं सेठ जी, ये सब चीजें तो बड़े आदमियों के लिए हैं, हम लोगों के लिए तो
3: तो तुम अपने आप को छोटा मानते हो भाई, आदमी पैसे से बड़ा नहीं हो जाता।
2: धन्यवाद आपका सेठ जी।
3: लीजिए, इसमें काहे का धन्यवाद भाई, आज ये सब कुछ नहीं चलेगा। और फिर तुम तो जानते ही हो कि सरकार के ऐसे आदेश हैं कि मालिक और मजदूर बराबर के हिस्सेदार होंगे।
2: जी हाँ।
3: अरे सुनो, कोई है? एक ड्राई जिन और थोड़ा खाने पीने को। हाँ जरा जल्दी करना।
2: अरे सुनिए सेठ जी, नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं चलेगा, वैसे भी मैं खाना खाकर आ रहा हूँ ना।
3: वही तो मैं कब ऐसा कह रहा हूँ कि तुम बिना खाना खाए चले आ रहे हो। दरअसल हमने तुम्हें इसलिए याद किया था।
2: जी फरमाइए
3: भाई। देखो हरकेश बाबू
2: जी,
3: तुम्हें हमारी मिल में काम करते हुए एक जमाना हो गया।
2: बिल्कुल।
3: तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को कौन नहीं जानता।
2: धन्यवाद।
3: और फिर ये बता सकते हो कि कभी हमने या तुम्हारे मैनेजर साहब ने तुमसे कभी कोई बात कही हो?
2: जी सेठ जी, वो तो सब ठीक है मगर ऐसा।
3: मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ
2: जी।
3: तुम्हें पता है हरकेश कि हर जगह हम तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं।
2: जी
3: देखो
2: जी,
3: हम हमेशा तुम्हारे भले की ही सोचते हैं, तुम शायद इस बात को नहीं जानते, आज मिल में हड़ताल का 25वां दिन है
2: जी।
3: मगर तुम ये बता दो कि हमारी ओर से
2: तो फिर ये हमारे आपके बीच में इस तरह
3: करेक्ट की? सुना आपने मैनेजर साहब? अरे भाई इसीलिए तो तुम्हें बुलवाया है, हम चाहते हैं कि तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल तुम्हें दिया जाए
2: जी,
3: इसलिए हमने बेधड़क निर्णय ले लिया है।
2: अच्छा,
3: तुम्हें हमारी मिल में काम करते हुए आज 14 साल हो गए।
2: बिल्कुल।
3: पर अभी तक स्टोर कीपर नहीं बन पाए, पिछली बार भी हम सोचते रहे कि तुम्हारा प्रमोशन कर दें पर खैर छोड़ो पुरानी बातों को। हाँ तो मैनेजर साहब निकालिए वो कागजात। हाँ लाइए। देखो हरकेश जी, तुम भी क्या याद करोगे। हाँ ये लो अपना प्रमोशन ऑर्डर, और ये रहे हड़ताल वापसी का कागजात
2: जी।
3: मैं यहीं प्रमोशन के ऑर्डर्स पर साइन करता हूँ, और हाँ ये लो दूसरा कलम, तुम इन कागजातों पर साइन।
2: नहीं सर जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
3: क्यों?
2: मैं कभी भी अपने साथियों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा।
3: अरे भाई अभी तुमने कागजात तो पढ़े ही नहीं, फिर तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि तुम किसी के साथ विश्वासघात कर रहे हो? अरे भाई देखो, सभी मांगों को तो सरकार भी नहीं मानती। हाँ मोटी मोटी मांगे इन कागजातों में पूरी कर दी गई हैं, मसलन इन हड़तालों के दिनों की पगार नहीं काटी जाएगी, और फिलहाल महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह।
2: बाकी पिछली महंगाई और उन दो आदमियों का जो मिल की खराब मशीनों पर काम करते हुए अपनी।
3: हमने इंजीनियर की रिपोर्ट मांगी थी
2: जी,
3: उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था।
2: क्या कहा?
3: खैर छोड़ो इन बातों को, जहां काम होगा वहां हड़तालें भी होंगी, और ये क्रम तो अब साधारण सा हो गया है। हाँ मैनेजर साहब वो भी आर्डर दीजिए। हरकेश बाबू ऐसा है, तुम्हारे परिवार को देखते हुए क्वार्टर तुम्हारा छोटा है, हमने ये भी आर्डर्स कर दिए हैं कि इसी गेस्ट हाउस के पास बन रहे 3 टाइप्स क्वार्टर में से एक क्वार्टर तुम्हें दे दिया जाए।
2: वाह सेठ जी वाह। मुझे ये सब देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप कितने दयावान मालिक हैं। वारे परवरदिगार सबको ऐसा मालिक दे जो किसी एक व्यक्ति विशेष को खरीद कर बाकी के पैरों पर कुल्हाड़ा मार दे। खूब सेठ जी खूब।

0: काफी अच्छा और सराहनीय प्रयास है आपका, भगवान आपको बहुत दे।
1: वो मैनेजर साहब, आप क्या बता रहे थे कि हमारे दो वर्कर्स के बच्चों का किसी ने अपहरण कर लिया है, और वो वर्कर्स न जाने क्यों ये बला हर केस के ऊपर।
0: कमाल है सेठ जी, कमाल है, बहुत अच्छी चाले जानते हैं आप।
1: तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने तो सुनते ही मना कर दिया कि हमारा हरकेश कभी ऐसा कर ही नहीं सकता
0: जी।
1: और फिर भाई, ये तो तुम भी जानते हो कि कहने वालों का मुंह थोड़ी ही रोक सकते हम।
0: अच्छा सेठ जी, अब इजाजत दीजिए।
1: अरे चले भी जाना भाई, चले जाना, हम अपनी गाड़ी से छुड़वा देंगे अगर देर भी हो जाएगी।
0: नहीं नहीं,
1: तो।
0: नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, आपके तो मुझ पर वैसे भी बहुत एहसान है सेठ जी।
1: मगर आजकल की दुनिया में इसे मानता कौन है, हम तो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, फिर ना जाने क्यों वो लोग हम।
0: यहाँ बुराई या भलाई का सवाल नहीं है सेठ जी, यहाँ तो जायज बातों की मांगे हैं। आप अभी पूरा कर दीजिए, सुबह से ही हम सब लोग काम पर आ जाएंगे।
1: अच्छा मान लो हमने कोई भी मांगे नहीं मानी और सारे वर्कर्स को नोटिस दे दिया कि यदि एक सप्ताह के अंदर काम पर नहीं लौटता है तो उसे नौकरी से अलग कर दिया जाएगा।
0: ये क्या कह रहे हैं?
1: और ये भी जानते हो तुम कि देश में कितनी बेरोजगारी है। सपोज हमने मिल में नई भर्ती कर ली तो मेरा ख्याल तो यह है कि बेरोजगारों को रोजगार तो मिल ही जाएगा, और फिर नए वर्कर्स शुरू शुरू में कोई ऐसा काम।
0: सेठ जी, आप मुझे यहां बुलाकर धमकी देकर डराना चाहते हैं?
1: अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही मनगढ़ंत तुम्हें सुनाने लग गया। मेरा फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्यों मैनेजर साहब, अगर सीधी तरह से काम निकल आए तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही नहीं आएगी। हाँ हरकेश सिंह, हो सकता है तुम्हें परेशानी ना महसूस हो रही हो, मैं भी आज फुर्सत में था, सोचा तुम्हें बुलाकर ही बात कर ली जाए, लेकिन शायद तुम जल्दी में हो। अच्छा मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूं, आज ना सही 24 घंटे में जवाब दे दो, और इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहो कि बिना तुम्हारे फाइनल जवाब के हम अपनी ओर से कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे।
0: सेठ जी, आप कुछ करें या ना करें, मगर जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी कोई भी आदमी काम पर नहीं जाएगा।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वर्कर्स के काफी वफादार आदमी हो।
0: जी शुक्रिया,
1: मगर एक बात ये भी तो हो सकती है हरकेश बाबू।
0: क्या?
1: कि वर्कर्स तुम्हें अकेला छोड़कर काम पर वापस आ जाए।
0: जी?
1: नहीं, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तो यूं ही ये सब।
0: सेठ जी, आप मीठी जुबान में मुझे गाली और धमकी दे रहे हैं।
1: ओफो, मैंने पहले ही कह दिया है कि आई एम योर वेल विशर, मैं चाहता हूं कि मेरी ओर से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने पाए। भाई तुम भले ही मत मानो, मगर मैं हमेशा तुम्हारे भले की सोचता हूं। हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही हों, मगर
0: मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है।
1: भाई फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चों के लिए। मैं जानता हूं कि तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो, अब भी सोचने के लिए तुम्हारे पास काफी समय है, 24 घंटे। जानते हो 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, देख लो जैसी तुम्हारी मर्जी।
0: सेठ जी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, दोबारा फिर सुन लीजिए, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, पहले उन दो मजदूरों के बारे में सोचना है जो पुरानी मशीनों के कारण इस दुनिया से उठ गए।
1: तुम भूल रहे हो हरकेश, उसमें मशीनों का कोई दोष नहीं था, वो तो इन्हीं लोगों की कमी थी, इसमें हम लोग कर भी कह सकते हैं, रा फंड और एरियर। बताइए ना मैनेजर साहब, वो पेपर हमने मूव कर दिए हैं कि नहीं?
0: सेठ जी, इन सब आश्वासनों से कुछ हल होने वाला नहीं है, आपको मजदूरों की मांगे माननी ही होंगी।
1: देखा जाएगा, उसकी चिंता तो हमें होनी चाहिए।
0: क्या आप ये सोचे बैठे हैं कि हड़ताल यूं ही वापस हो जाएगी?
1: ना सही,
0: अगर आप मुझे मैनेजर बनाने का भी लालच देना तो भी शायद मैं अपने वचन से एक इंच भी नहीं हटूंगा।
1: देख लो भाई, स्टोर कीपर बनने के बाद मैनेजर बनने के लिए केवल दो ही सीढ़ियां पार करनी होती हैं। मेरे ख्याल से अगर तुम मान जाओ तो रिटायरमेंट से पहले ही मैनेजर बन जाओगे।
0: माफ कीजिए सेठ जी, और ये पकड़िए अपने कागजात।
1: कम से कम इन्हें तुम पढ़ तो लो।
0: ये लीजिए,
1: ये क्या?
0: ये रहा आपका जवाब।

0: ना रहेगा बास और ना ही बजेगी बासरी। अच्छा सेठ जी, आप इजाजत दीजिए।
1: इसकी इतनी हिम्मत! मैनेजर, तुम यहां बैठे बैठे मेरा मुंह कटाक रहे हो। जाओ, जाकर सुबह होने से पहले सारी कार्यवाही पूरी कर दो। ये तो क्या, इसका बाप भी चुकेगा।

0: नहीं चलेगी।
1: हरकेश सिंह
0: जिंदाबाद।
1: हरकेश सिंह
0: जिंदाबाद।
1: हमारा नेता
0: जिंदाबाद।
1: हमारा नेता
0: जिंदाबाद।
1: नाना साहिब
0: नहीं चलेगी।
1: नाना साहिब
0: नहीं चले।
2: साथियों, शायद आप मिल मालिकों द्वारा आज लगाए गए इश्तिहारों से हैरान होंगे। इन धमकियों से हमें जरा भी नहीं डरना है। मालिक हमेशा ये चाहते हैं कि मजदूरों की एकता को किसी ना किसी प्रकार से भंग किया जाए। मेरे साथियों, हमें बहुत ही होशियारी और एकता से काम लेना है, तभी मांगे पूरी करा सकेंगे हम। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग किन परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, मगर ध्यान रहे कि जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकेंगे। मुझे दुख है कि हमारे दो साथियों रामकरण और बालक राम के बच्चों का अपहरण इन्हीं मालिकों द्वारा परेशान करने की नियत से किया गया है, ताकि हम लोग मालिकों के सामने अपने घुटने टेक दें। दोस्तों, हमें हर तरह से सावधान रहना है। किसी भी दिशा में मालिकों के मंसूबे पूरे नहीं करने दिए जाएंगे।
1: हरकेश सिंह जिंदाबाद।
0: मिल मालिक
1: हाय हाय।
0: मिल मालिक
1: हाय हाय।
0: हरकेश सिंह
1: जिंदाबाद।
0: मिल मालिक
1: हाय हाय।
2: कहां गए मेरे वो दोनों साथी रामकरण और बालक राम? शायद परेशान होंगे, इसीलिए यहां। अरे
3: मेरा राजू।
2: शिवाली,
3: क्या राजू?
2: क्या हुआ? अरे कुछ बोलो।
3: राजू को
2: राजू को क्या हुआ? शिवाली,
3: तो आदमी पकड़ कर उठा कर ले गए।
2: शिवाली घबराओ, घबराओ नहीं। शिवाली घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शिवाली
4: नहीं
2: मेरे राजू,
4: ये तीसरी घटना है। अब हमें हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं होगा। चलो साथियों, सेठ की कोठी को घेर लो।
2: नहीं सुनो।
4: चलो आओ साथियों।
2: अरे मेरी
4: सेठ की कोठी को चारों तरफ से घेर लो।
2: सुनिए आप लोग, ठहरिए ठहरिए, शांत हो जाइए, अभी वहां कोई नहीं जाएगा।
4: हम लोग कब तक ये सहन करते रहेंगे? ईश्वर ने हमें भी तो दो हाथ दिए हैं।
2: लेकिन
4: ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
2: बात तो सुनिए,
4: अब हम नहीं रुकेंगे। चलो भाइयों,
2: अरे
4: जल्दी करो।
2: ठहरो ठहरो, एक मिनट, मेरी बात सुनो भाइयों, मेरी बात सुनो। देखिए देखिए, मैं आप लोगों के जज्बात की कद्र करता हूं, मगर जाने से पहले मुझे आश्वासन दो कि ये भी मजदूर हिंसा का सहारा नहीं लेगा।
4: नहीं, हम मिल और मिल मालिक दोनों को फूंक देंगे।
2: लेकिन इससे कोई फायदा नहीं निकलेगा।
4: कहते हैं तुम बीच में ना पड़ो।
2: लेकिन मेरी बात तो सुने आप।
4: कब तक सहन करेंगे इस जुल्मों को? हम अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं।
2: मैं समझता हूं, लेकिन
4: चलो साथियों, आज सारा हिसाब पूरा कर लें। भैया तुम इस बीच में मत पड़ो।
2: लेकिन शंकर, मेरी
4: तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा है।
2: मैं समझता हूं।
4: चलो साथियों चलो।
2: अरे मेरी बात, आप लोग मेरी बात सुनिए। ठहरो भाई ठहरो। अरे ओ भगवान, मैं क्या करूं? अब ये लोग वहां जाकर पता नहीं क्या करेंगे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या करूं? चलो मैं रामकरण की तरफ जाकर देखता हूं, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। अरे रामकरण, ओ रामकरण, राम,

0: अरे यहां तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्या उसका बच्चा मिल गया? चलो अच्छा है, चलो भाई बेचारे बालक राम को ही देख लिया जाए। बालक राम, अरे ओ बालक राम, बालक, अरे ओहो यहां तो ताला लगा हुआ है, मैं वैसे ही आवाज मार रहा हूं। अरे अरे ओ अरे रामदेव सुनो जरा भाई, ये बालक राम कहां चला गया? ऐसी हालत में बता तक कर नहीं गया?
1: अरे वो तो कल सुबह ही चला गया, उसके बहू ने बतेरा मना किया मगर उसके गुस्से के आगे एक ना चली।
0: अच्छा,
1: कह रहा था यहाँ के मरने से तो सेठ से माफी मांगना ठीक है।
0: क्या वो सेठ के पास गया है?
2: हमारे दो वर्कर्स के बच्चों को अपहरण कर लिया है, वो तुम्हारा नाम ले रहे थे, मुझे तो विश्वास आता है, लेकिन वो कह रहे थे इन बच्चों का अपहरण हरकेश ने किया है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये सेठ का षड्यंत्र है, षड्यंत्र।
2: मैं सदैव तुम्हारे भले ही चाहता हूँ, हो सकता है वर्कर्स तुम्हें छोड़कर काम पर वापस आ जाए, मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ, मैं सदैव तुम्हारे भले की चाहता हूँ, दो सीढ़ियां पार करके मैनेजर भी बन जाओगे, आखिर मिल तो चलेगी ही।
1: क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो?
0: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
1: देखो आज एक गया है, कल दो जाएंगे, तीसरे दिन तुम अकेले ही खड़े रहोगे, सब लोग आगे बढ़ चुके हैं।
0: नहीं, नहीं।
1: मैं पूछती हूँ आखिर कितने दिनों तक ये हड़ताल चलती रहेगी? हम तो तंग आ गए हैं मरी इस हड़ताल से। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी चालें हैं।
0: नहीं, ये
1: बनने का शौक है तो अपने बलबूते पर बनो, दूसरे की आड़ लेकर दूसरे कंधे पर बंदूक तो मत चलाओ। जानते हो वो नौबत आ गई है कि दुकानदार बीड़ी का बंडल तक उधार नहीं देता, रोटी तो बहुत दूर रही,
0: ओ भगवान,
1: घर में एक दाना नहीं बचा, बच्चे अलग भूख से तड़प तड़प कर हाथ पैर पटक कर सो जाते हैं, बस हो गया अब बर्दाश्त के बाहर है।
0: रामदेव शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो सबकी भलाई के लिए आगे आ रहा हूँ रामदेव, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रामकरण और बालक राम के बच्चे ही नहीं रामदेव, मेरा बेटा, मेरा राजू भी चला गया रामदेव, मेरा राजू भी चला गया।
1: राजू?
0: हाँ रामदेव, मेरा राजू।
1: और करो दुश्मनी मालिकों से। मैं तुम लोगों की तरह भले ही दुनियादारी ना जानती हूँ मगर इतना जरूर जानती हूँ कि बड़े लोगों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं रहता, और तुम या हम इन बड़े लोगों क्या बिगाड़ लेंगे, मिल एक महीना नहीं एक साल भी बंद रहे तो मालिकों की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, मारा जाएगा गरीब मजदूर, इस बस्ती के घर घर में कोई आंच नहीं सुलगाता, एक अजीब सन्नाटा सा छा गया है इस बस्ती को, तुम जानते ही हो, शाम यहाँ बच्चे देर रात तक कूदते फांदते थे, मगर आज ये जगह शमशान की तरह शांत है। अरे पेट में रोटी होगी ना तभी तो कूदेगा आदमी, खाली पेट तो चलना भी मुश्किल है।
0: बस करो रामदेव, बस करो बहन, बस बहुत हो गया, मेरे सीने में भी आदमी का दिल है रामदेव, मगर मैं करूं भी तो क्या करूं, मेरी तो कुछ
2: सोच लो, 24 घंटे का समय तुम्हारे पास है, बिना तुम्हारे फाइनल जवाब के हम अपनी ओर से कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे, 24 घंटे का समय तुम्हारे पास है, 24 घंटे का समय तुम्हारे पास है।
0: नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं भगवान खोलो शिवाली दरवाजा, खोलो शिवाली खोलो दरवाजा, खोलो शिवाली बंद करो साले इस दरवाजे को बंद करो।
3: क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी?
0: नहीं वो शिवाली कौन कहता है कि मैं, मेरी तबीयत खराब है,

0: अरे हाँ, वो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ है घर में खाने को? लाओ।
1: अभी देखती हूँ।
2: कौन? अरे कौन है भाई? ओफ, वो आ तो रहा हूं, इस समय भी चैन नहीं लेने देते। आया भाई आया, कौन है?
3: आप ही हरकेश सिंह हैं?
0: जी हाँ, कहिए क्या बात है?
1: इंस्पेक्टर साहब, क्या हमारा राजू मिल गया? इंस्पेक्टर साहब बताइए बताइए कहाँ है वो?
3: कौन राजू?
1: हमारा बेटा राजू।
0: जी हाँ,
1: हमारा बेटा।
0: हमारा राजू बेटा। जी
3: हरकेश सिंह
0: जी,
3: मैं आपका वारंट लेकर आया हूँ आपको गिरफ्तार करने।
0: क्या, गिरफ्तारी का वारंट? लेकिन इंस्पेक्टर साहब किस जुर्म में?
3: आपने बस्ती के बालक राम और रामकरण के बच्चों को अगवा किया है।
0: नहीं नहीं, ये
3: इतना ही नहीं, तुमने मिलके स्टोर से भी माल गायब किया है।
0: मैंने? नहीं नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं,
1: नहीं कर सकते।
0: मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई काम नहीं किया, ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब
3: आपको जो कुछ कहना है थाने चलकर कहिए।
0: मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा, मेरा राजू, उसका भी अपराध, आप पूछिए किसी से इंस्पेक्टर साहब।
1: राजू को तो पद पांच उठाकर ले गए।
3: इसके भी थाने में चलकर रिपोर्ट लिखवाइए।
0: जी
3: मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए चलिए जल्दी करिए, मुझे और भी काम देखने। लेकिन
0: अच्छा तो चलिए इंस्पेक्टर साहब।
1: थोड़ी देर रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें भूखा पेट मत ले जाइए।
0: शिवाली,
3: मेरे पास इतना समय नहीं है।
0: शिवाली नहीं,
3: चलता है या नहीं?
0: नहीं नहीं साहब, मैं चलता हूँ। शिवाली, शिवाली नहीं, शिवाली कोई घबराने की बात नहीं है, तुम बिल्कुल मत घबराओ। देखो शिवाली, ये सब तो हम गरीब लोगों के साथ चलता ही रहता है, तो परेशान मत होना, तो बिल्कुल परेशान मत होना। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए चलिए।

0: आइए चौधरी हरकेश सिंह जी, आ गए ना।
1: यही है वो नेता।
0: बिल्कुल सही आदमी पकड़ कर लाए हो इंस्पेक्टर, वाकई तुमने इनाम का कार्य किया है। कहिए चौधरी हरकेश सिंह, देख लिया, इसे कहते हैं मात। इसे कहते हैं मात। हरकेश, इस समय हम तुम्हारे लिए वो सब तो नहीं कर सकते, हाँ मगर इतना जरूर कर सकते हैं, यदि तुम चाहो तो तुम्हारी जमानत जरूर करवा सकते हैं।
2: नहीं सेठ, मुझे तुम्हारी झूठी दया की जरूरत नहीं है।
0: रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं गए। वाह वाह वाह हरकेश बहादुर।
2: मत भूलो सेठ, यही जली हुई रस्सी ये एक ना एक दिन तुम्हारे गले का फांसी का फंदा बन जाएगी। आज आज तुमने एक हरकेश को मिटाया है। याद रखो सेठ, जब तक तुम्हारे जुल्म जारी रहेंगे, ना जाने कितने हरकेश पैदा होते रहेंगे, और एक दिन सारे मजदूर इस मिल के मालिक होंगे, और वो दिन जरूर आएगा सेठ, जरूर आएगा, वो दिन जरूर आएगा सेठ, एक दिन जरूर आएगा सेठ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाटक, शीर्षक था अधूरा स्वप्न, लेखक थे आरपी सक्सेना। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब समय है लोकप्रिय फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में इब्राहिम अश्क की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है कृष।

कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरा जादू चल गया का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था इस्माइल दरबार ने। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म खिलाड़ी का ये गीत। गीत को लिखा है अनवर सागर ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

0: कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे का ये गीत। गीत को लिखा था इब्राहिम अश्क ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म परदेस से। गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के गाए फिल्म परदेश के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:30 हो रहे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजने को है। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत में भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम विवरण का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब एक नजर आज की सभा के शेष कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30। इसमें चर्चा रहेगी स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन विषय पर। खेल दुनिया में सुनेगा नो योर मेडिसिन KYM ऐप। भेंटवार्ता में सुनेगा युवाओं में घर करता मानसिक असंतुलन। वार्ताकार डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से बातचीत। ग्रामलोक कार्यक्रम में शाम 6:00 आप सुनेंगे चर्चा संरक्षित खेती। साथ ही आप सुनेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भेंटवार्ता रहेगी कैसे हो किसान भाइयों की आय दोगुनी। वार्ताकार डॉक्टर राम मिलन से श्री कृष्ण की बातचीत आप सुन सकते हैं। साथ ही होगा मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का। श्रमिक साथियों का कार्यक्रम मजदूर मंडल का समय रहेगा शाम 6:30। इसमें चर्चा रहेगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। भेंटवार्ता में सुनिएगा मुख कैंसर कारण और निवारण। इस विषय पर डॉक्टर अवधेश उपाध्याय से डॉक्टर विजेंद्र नारायण की बातचीत आप सुन सकते हैं। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेगा वार्ता स्वस्थ जीवन पद्धति का नाम है योग। वार्ताकार उमाकांत मिश्र से नीरज जैन की बातचीत।

शाम 7:31 पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष भेंट वार्ता, तंबाकू एवं निकोटीन की लत और उससे जुड़े जोखिम। वार्ताकार डॉक्टर सत्यपाल से अनिंद्र सिंह की बातचीत। गाने नए पुराने फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेगा रात्रि 8:00। 8:30 से हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत। हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों में रात्रि 9:30 पर सुनेगा अनुगूंज और रात 10:00 से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन कार्यक्रम का समय रहेगा आज सुबह 6:25। इसमें आप सुनेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर दास के विचार। श्री रामचरित मानस गान पाठ का समय रहेगा सुबह 6:35। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर आप सुनेंगे वार्ता आंखों के लिए पोषण का महत्व विषय पर। वार्ताकार होंगी डॉक्टर वाणी अग्रवाल।

आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास का समय रहेगा सुबह 7:31। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:45 पर आप सुनिएगा सरला शर्मा के गाए कुछ ब्रज लोकगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित डी के दातार का राग मारू विहाग में वायलिन वादन। कार्यक्रम आज के कलाकार का समय रहेगा सुबह 11:00। 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। महिला श्रोताओं का कार्यक्रम घर संसार का समय रहेगा दोपहर 1:15। इसमें चर्चा रहेगी सजग अभिभावक स्वस्थ और सुरक्षित बच्चे। मेरी माटी मेरा देश सेगमेंट में आप सुनेगा सालू मर्दा धिमक्का दा बनियान ट्री लेडी। वार्ता में सुनेगा गृह वाटिका एवं बागवानी से लाभ। वार्ताकार होंगी शारदा सिंह। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आप सुनेगा अनुराधा पौडवाल के गाए कुछ भजन। और 2:30 पर

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिएगा उस्ताद अली अहमद हुसैन खान का शहनाई वादन, साथ ही सुनिएगा पंडित भोलानाथ का भटियाली धुन में बांसुरी वादन। श्रोताओं, ये थे आज की सभा और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

कार्यक्रम की प्रस्तुति में अभी आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज की आवाज में सौदागर फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अमर प्रेम से। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा है आर टी वर्मन ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म आदि पुरुष से। आवाजें हैं सचेत टंडन परंपरा टंडन की। गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीतबद्ध किया है सचेत और परंपरा टंडन ने।

आदि पुरुष फिल्म के इस गीत के साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुसंध्या यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, समय हो चला है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का, तो सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

मॉर्निंग युवा साथियों, मैं हूँ आपकी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य। स्वागत करती हूँ आपके अपने मनोरंजन कार्यक्रम युवा। साथियों, आज हम आपके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आपके मनपसंद गीत। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बातों और गीतों का ये सिलसिला कार्यक्रम की चर्चा के साथ। अच्छा दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने और बेहतर भविष्य बनाने में लगे रहते हैं। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कुछ और हर दिन पूरे उत्साह के साथ वो अपना काम कर सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी खुशियों और सफलताओं की असली नींव क्या है? दरअसल दोस्तों, अगर इंसान का शरीर स्वस्थ ना हो और मन शांत ना हो तो जीवन की कोई भी उपलब्धि उसे पूरी खुशी नहीं दे सकती। इसी बात को हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, पहला सुख निरोगी काया। यही कारण कहा जाता है कि स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तभी हमारी सोच हम जीवन में चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। स्वस्थ शरीर और आत्मविश्वास के साथ, जबकि अस्वस्थ शरीर मन में तनाव, चिंता और निराशा पैदा करता है। इसलिए शरीर और मन दोनों का ही स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, स्वस्थ मन की पहचान पॉजिटिव सोच, धैर्य, कॉन्फिडेंस और खुश रहने की आदत से होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल हेल्थ का महत्व उतना ही बढ़ गया है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का है। यदि मन शांत पॉजिटिव रहेगा तो जीवन अधिक सुखद और रहेगा। दोस्तों, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए हमें कुछ संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जैसे सब्जियां, फल, पौष्टिक भोजन शरीर को इसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और मॉर्निंग वॉक शरीर और मन को करते हैं। योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। नींद भी बहुत आवश्यक है क्योंकि कम नींद तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती है। साथ ही हमें तनाव मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना चाहिए और अपने परिवार और टाइम स्पेंड पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छी आदतें जीवन को सुंदर बनाती हैं। दोस्तों, स्वस्थ जीवन के लिए नशे से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। तंबाकू, शराब और दूसरी नशीली चीजें शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। साथियों, जानते हैं हर साल 31 मई को यानी आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके। कैंसर, हृदय रोग और लंग्स की गंभीर बीमारियों का कारण है। इसलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए, तंबाकू छोड़िए, जिंदगी से रिश्ता जोड़िए और एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। परिवार और समाज की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेलकूद, योग और अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वो शारीरिक और मानसिक तो हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की, आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न, वर्ल्ड हेल्थ डे कब कीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा और इसका उत्तर जानने के लिए आप चलिए अंत में का निवास होता है।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: साथियों, आपका युववाणी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। खेल हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ अनुशासन, समर्पण और ईमानदारी जैसी महत्वपूर्ण सीख भी देते हैं। खेल की दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं और खुद को हर चुनौती के लिए तैयार रखते हैं। आज के समय में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन और फिटनेस के लिए कई तरह की दवाइयों और सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन साथियों, कई बार जानकारी के अभाव में ऐसी मेडिसिन्स का सेवन हो जाता है जो खेल के नियमों के विरुद्ध होती हैं। खिलाड़ियों को ऐसी अनजानी गलतियों से बचाने के लिए और सही जानकारी देने के उद्देश्य से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया ने नो योर मेडिसिन यानी KYM ऐप 4 नवंबर 2024 को लॉन्च किया था। ये ऐप प्लेयर्स को यह जांचने में मदद करते हैं कि वो जो दवा ले रहे हैं वो खेल के नियमों के अनुसार है या नहीं। साथियों, सबसे खास बात ये है कि इसका यूज़ बेहद आसान है। आप दवा का नाम टाइप कर सकते हैं, बोल सकते हैं या फिर पैकिंग को कैमरा से स्कैन कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में ऐप बता देता है कि उस दवा में कोई प्रतिबंधित तत्व मौजूद है या नहीं। दोस्तों, ये ऐप वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की गाइडलाइंस पर आधारित है, यानी जानकारी विश्वसनीय और खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब साथियों, जरा सोचिए, अगर किसी खिलाड़ी को पहले से पता चल जाए कि कौन सी दवा सुरक्षित है और कौन सी नहीं, तो कितने खिलाड़ी अनजाने डोपिंग मामलों से बच सकते हैं। KYM ऐप सिर्फ प्लेयर्स के लिए ही नहीं, बल्कि कोच, स्पोर्ट्स डॉक्टर्स, ट्रेनर्स और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। और हाँ दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी है, तो ये ऐप कैमरा और माइक्रोफोन जैसी सुविधाओं का उपयोग सिर्फ सर्च के लिए ही नहीं, बल्कि डेटा सिक्योरिटी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ज़रूरी बात याद रखिए कि ये ऐप एक सहायक माध्यम है। किसी भी दवा या सप्लीमेंट को लेने से पहले डॉक्टर या स्पोर्ट्स अथॉरिटी की सलाह लेना हमेशा ज़रूरी है। आज खेलों में कंपटीशन बढ़ रहा है और ऐसे समय में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो अगर आप खिलाड़ी हैं या किसी खिलाड़ी को जानते हैं, तो चेक बिफोर यू कंज्यूम यानी कुछ भी लेने से पहले जांच जरूर करें, क्योंकि असली जीत वही है दोस्तों जो ईमानदारी और नियमों के साथ हासिल की जाए। नो योर मेडिसिन दवाओं की सही जानकारी को आसान और रोचक तरीके से लोगों तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाता है। बेहतर और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने के लिए KYM ऐप एक भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो साथियों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खेल की भावना को हमेशा जिंदा रखिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बात की स्वस्थ तन और मन के बारे में, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सच्चा स्वास्थ्य तभी संभव हो सकता है जब शरीर और मन दोनों संतुलित हों। साथियों, आज के दौर में युवा पढ़ाई, करियर, कंपटीशन और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण कई प्रेशर से घिरा हुआ है, जिससे उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। मानसिक असंतुलन को कैसे कम कर सकते हैं, जानने के लिए आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता, जिसका विषय है युवाओं में घर करता मानसिक असंतुलन। डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से बात कर रही है गीतिका यादव।
6: साथियों, आज के समय में हम युवा कांस्टेंट प्रेशर से घिरे हुए हैं, फिर चाहे वो प्रेशर पढ़ाई से जुड़ा हो, सोशल मीडिया से जुड़ा हो या कुछ पर्सनल चैलेंजेस हो। इन सभी के कारण आज का युवा अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाता है। आज इन्हीं इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक एक्सपर्ट, जो युवाओं के साथ काम करने में काफी अनुभव रखती है।

0: आज हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ इम्बैलेंसेस के पीछे के कारण क्या हैं, कैसे इन्हें पहचाना जाए व कैसे इनसे निपटा जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रिया श्रीवास्तव का और बात करते हैं विषय युवाओं में घर करता मानसिक असंतुलन पर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी आगरा में। आज के समय में हम देख रहे हैं कि कई युवा मानसिक असंतुलन की समस्या का सामना कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग इसके पीछे कौन से बड़े फैक्टर्स या कारण हो सकते हैं जो इन इश्यूज को बढ़ावा देते हैं?
1: बहुत से कारण हैं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे बदलता हुआ लाइफस्टाइल, परिवार से जुड़ाव में कमी, पढ़ाई और करियर की चिंता, हर क्षेत्र में कंपटीशन, ये सब कारण हैं। इन सब के साथ ही सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया का प्रभाव भी इमोशनल हेल्थ को काफी प्रभावित कर रहा है। रील की वजह से रियलिटी से दूर हो रहे हैं युवा। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन, जेलिसी, कंपैरिजन, लोनलीनेस, पुअर सेल्फ परसेप्शन आदि जैसे नेगेटिव इमोशन डेवलप हो रहे हैं।
0: मैम जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है, तो मेंटल हेल्थ इम्बैलेंसेस कि वो कौन से सिग्नल्स या साइंस हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए बल्कि उन पर तुरंत काम करना चाहिए?
1: मानसिक स्वास्थ्य की यदि समस्याओं की बात करें तो हमें यह जानना जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो काबिलियत और संभावनाओं से भरा है, ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारा विकास हो सके। ये हमें हर विपरीत परिस्थिति में ऊंच नीच का सामना करते हुए एक खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य विचारों, भावनाओं और व्यवहारों से मायने रखता है। यही हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य का सही न होने के लक्षण, जैसे बेचैनी, उदासी, घबराहट, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, लो टॉलरेंस, सताने वाली भावनाएं या अत्यधिक विचार आना या खुदकुशी जैसे विचार आना, ये सभी लक्षण हैं जिन्हें हम पहचान कर अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो सकते हैं।
0: आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहां सब इंटरकनेक्टेड है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना पहले से डिफिकल्ट लगता है, तो इस समय में इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस और कैसे ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक्सेल करने में हमें मदद कर सकती है, आइए जानते हैं।
1: इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी और दूसरों के इमोशंस, भावनाओं को पहचानने, समझने और मैनेज करने की योग्यता है। हाई ईक्यू वाले लोग समझ सकते हैं कि उनके इमोशन उन्हें और दूसरों के बिहेवियर को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। वो इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बच सकते हैं, अपने रिलेशंस को मैनेज कर सकते हैं। आईक्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ईक्यू। अगर हम साइकोलॉजिस्ट गोलमैन के शब्दों में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ की टू फुलफिल एंड सक्सेसफुल लाइफ।
0: हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के अराउंड सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन काफी कॉमन है। हम कैसे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और फ्रेंड्स और फैमिली कैसे हमें इसमें सपोर्ट कर सकते हैं?
1: तो अगर मेंटल इश्यूज के लिए स्टिग्मा की बात करते हैं, तो जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, हम बुखार आने पे, खांसी या जुखाम होने पे इनका जिक्र करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है भावनात्मक या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की, हम सभी हिचकिचाते हैं। और स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए हमें सबसे पहले मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमें ओपन होके बोलने, सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देखने, सुनने और छूने की क्षमता की तरह ही होती है हमारे महसूस करने की क्षमता। हमारे महसूस करने की क्षमता के प्रति आत्म जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखें, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और मंजूरी ही बनेगी आपकी ताकत, विकास और विजय की कहानी।
0: प्रिया श्रीवास्तव जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे बातचीत करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: वेलकम बैक साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता जिसका विषय था युवाओं में

0: मानसिक असंतुलन। डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से बात कर रही थी गीतिका यादव। दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, सिनेमा समाज का आईना माना जाता है। फिल्मों के माध्यम से न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि समाज को जागरूक करने का काम भी किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आज समाज और खासकर युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये समस्या सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि परिवार, रिश्तों और पूरे समाज को प्रभावित करती है। सिनेमा ने भी समय समय पर इस विषय को गंभीरता से उठाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। नशा, चाहे वो शराब, ड्रग्स यह तंबाकू का क्यों ना हो, आज युवाओं के सामने एक बनी चुनौती बन गया है। कई फिल्मों ने इस गंभीर समस्या को संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया है। इन फिल्मों ने दिखाया है कि नशा इंसान की सोच, रिश्तों, करियर और स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करता है। साथ ही ये संदेश भी दिया है, इच्छा शक्ति और परिवार का साथ व्यक्ति को इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं पर्दे पर नशे के दुष्परिणाम दिखाती हमारी कुछ फिल्में। पहली है उड़ता पंजाब। ये फिल्म पंजाब में बढ़ते ड्रग संकट पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार नशे का कारोबार युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। अलग अलग किरदारों की कहानी के माध्यम से फिल्म समाज को चेतावनी देती है और ड्रग्स केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। अगली मूवी है संजू फिल्म। ये फिल्म एक्टर संजय दत्त के जीवन पर आधारित है। फिल्म में उनके ड्रग एडिक्शन, मानसिक संघर्ष और उसे बाहर निकलने की कहानी दिखाई गई है। संजू ने ये संदेश दिया है कि गलत संगत और नशा किसी भी व्यक्ति का जीवन बिगाड़ सकता है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति और परिवार का सहयोग उसे नई दिशा दे सकता है। साथियों अगली मूवी है आशिकी 2। ये फिल्म प्रेम कहानी होने के साथ साथ शराब की लत के दुष्प्रभाव दर्शाती है। फिल्म का मुख्य किरदार अपनी शराब की आदत के कारण अपने करियर और रिश्तों को खोने लगता है। ये दर्शकों को समझाती है कि नशा धीरे धीरे इंसान की सफलता और खुशियों को नष्ट कर देता है। साथियों अगली मूवी है डेव डी। ये फिल्म आधुनिक समाज में शराब और आत्म विनाश की मानसिकता को दर्शाती है। मुख्य किरदार अपनी भावनात्मक कमजोरियों के कारण नशे की ओर बढ़ता है। ये फिल्म ये भी दिखाती है कि मानसिक तनाव और गलत फैसले व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। साथियों इन फिल्मों का उद्देश्य केवल कहानी दिखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना भी है। फिल्मों के जरिए ये संदेश दिया जाता है कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। आज के युवाओं के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो फिल्मों से पॉजिटिव सीख लें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अच्छा साथियों, जैसा कि हमने बात की कि हर वर्ष 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग और दूसरी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। सिनेमा और मीडिया इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि फिल्मों और कलाकारों के माध्यम से समाज तक प्रभावशाली संदेश पहुँचता है। दोस्तों बुरी आदतें हमारी जिंदगी को कमजोर बना देती हैं, लेकिन हिम्मत इंसान को फिर से खड़ा होना सिखाती है। इसी जज्बे के साथ आइए दोस्तों सुनते हैं संजू मूवी का ये मोटिवेशनल सॉन्ग।

साथियों, आप सभी को याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने सोचा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब दोस्तों, वैसे तो समय है आप सभी से विदा लेने का, पर विदा लेने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी टिप। जैसे कि हम जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में शरीर को स्वस्थ और तरोताजा बनाए रखने के लिए हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी है। तेज धूप और बढ़ते टेम्परेचर के कारण शरीर से पसीने के रूप में वाटर लॉस हो जाता है। इसलिए दोस्तों, दिन भर में सफिशिएंट अमाउंट में पानी पिए, क्योंकि पानी सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि शरीर को एनर्जी भी देता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त स्वस्थ यार को दीजिए आज्ञा। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। अब समय हो चला है ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीण लोक का, तो सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम्यलोक में, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हमसफर उपासना पांडे, लेकर के बहुत सारी काम की बातें हैं और मनोरंजन के लिए है लोकगीतों का साथ। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस भीषण गर्मी में अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि भाई सूरज का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भैया बचाव ही उपचार है। हालांकि कल और आज जो बारिश हुई है, जो आंधी आई है, तेज़ हवाएं जो चल रही हैं, उससे तापमान में गिरावट आई ज़रूर है। मौसम ठंडा है लेकिन फिर भी बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचाव ही उपचार है। साथियों, हर मौसम अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर बदलते मौसम में हमें भी अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा नहीं, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बदलते मौसम में जो भी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कुछ चुनौतियां हों, उनसे बचा जा सके। अच्छा, बात हमारे किसान साथियों की करें तो हमारे किसान साथियों को भी बदलते मौसम में खेती बाड़ी कम होती है और कृषि भूमि और बढ़ती लागत के कारण भी हमारे किसान भाइयों के सामने कई चुनौतियां होती हैं, जो किसानों की आय को भी प्रभावित करती हैं। और इसीलिए आवश्यकता होती है कि किसानों को उन सभी नई नई नीतियों के बारे में हम जानकारी देते रहें, जो उनकी आय को बढ़ाने का काम करें। ऐसा ही एक विषय है संरक्षित खेती का, जो कि किसानों की आय और खेती बाड़ी को आधुनिक बनाने में विशेष भूमिका निभा रहा है। मौसम की मार हो या बढ़ी लागत के बीच खेतों का दायरा कम हो, ऐसे में संरक्षित खेती एक अच्छे विकल्प के रूप में सामने आ रही है। अच्छा, संरक्षित खेती से तात्पर्य वो खेती जिसमें फसलों को प्राकृतिक वातावरण से आंशिक या पूर्ण सुरक्षा प्रदान करके उगाया जाता है। इसमें पौधों को पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस या शेड नेटें जैसी संरचनाओं के अंदर उगाया जाता है, ताकि उन्हें अधिक गर्मी, ठंड, तेज बारिश, ओलावृष्टि और कीटों से बचाया जा सके। आसान शब्दों में कहें तो फसलों का मौसम की मार से बचाने का ये बहुत एक अच्छा तरीका है। संरक्षित खेती में किसान वातावरण को अपनी आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तापमान, नमी और सिंचाई का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। इसके कई फायदे भी हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा तो यही है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके अलावा फलों और सब्जियों की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है। तीसरा, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, क्योंकि सिंचाई ड्रिप तकनीक के माध्यम से की जाती है। और सबसे अच्छी बात कि उत्पादन पूरे साल चलता रहता है, जो परंपरागत खेती में नहीं हो पाता था। किसानों को एक फसल के बाद दूसरे फसल तक कई महीनों तक का इंतजार करना पड़ता था और कमाई भी उतनी नहीं हो पाती थी। अच्छा, जब संरक्षित खेती की जाती है तो फसलों को रोग व कीटों से भी बचाकर रखा जाता है, तो इससे भी फसल बची रहती है, इन रोगों का, कीटों का फसल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अच्छा, इस माध्यम से जो जो फसलें उत्पादित की जा सकती हैं, उनमें हम बात करें टमाटर की, शिमला मिर्च, खीरा, फूल गोभी, स्ट्रॉबेरी तथा फूलों में गुलाब, गेंदा इत्यादि की खेती की जाती है। इसलिए किसान भाइयों, आज के समय में यदि किसान नई तकनीकों को अपनाते हैं तो वे अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ खेती को और भी टिकाऊ बना पाते हैं। और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसानों की जो खेती योग्य भूमि है वो धीरे धीरे संकुचित होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जिसका प्रभाव खेती पर भी बढ़ रहा है। ऐसे में हमें उन अलग अलग विकल्पों को चुनने की आवश्यकता है, उनका उपयोग करने की आवश्यकता है, जो हमारे खाद्य उत्पादन को बढ़ाने का काम करें, और संरक्षित खेती उसमें से एक है। साथ ही साथ आय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आय भी अच्छी हो रही है और आप जैसा चाहें उस तरीके से आप मुनाफा कमा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अलग अलग कृषि केंद्र

जो भी है, वहां से जाकर के भी आप संरक्षित खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस दिशा में जा सकते हैं, संरक्षित खेती कर सकते हैं और स्वयं को संपन्न से और संपन्न बना सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी हमारी आज की चर्चा और अब वक्त है मनोरंजन का, यानी कि लोकगीत का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान साथियों, आज है 31 जनवरी और आज का दिन विशेष महत्व का दिन है। क्यों? क्योंकि आज हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मना रहे हैं। जो कि हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू जो कि मिलता तो बहुत सस्ता है, 10-15 रुपए का आराम से खुलेआम आपको मिल जाएगा, लेकिन कारण बनता है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का। इसके सेवन से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और सांस संबंधी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तंबाकू सेवन करने वाले को तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ उसके परिवार और आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। आज की तारीख में ज्यादातर युवा कई बार अपने दोस्तों के दबाव में या दिखावे में इसकी शुरुआत कर बैठते हैं और धीरे धीरे इसकी लत के अधीन हो जाते हैं, और जब पता चलता है कि भैया आप तो फंस गए तो फिर वापस लौटने में दिक्कत होती है। इसलिए अच्छा है कि वक्त रहते ही स्वयं को इस आदत से दूर कर लिया जाए। आपके भी आसपास या घर परिवार में कोई भी तंबाकू का सेवन करता है तो उसे आप छोड़ने के लिए प्रेरित करें, उसका साथ दें। शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन दृढ़ संकल्प, परिवार के सहयोग से और चिकित्सीय सलाह से तंबाकू की लत को दूर किया जा सकता है। और जब आप तंबाकू छोड़ देंगे तो अपने स्वास्थ्य में भी आप सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि सांस लेने में सुधार होगा, हृदय रोग का खतरा भी कम होगा और जीवन पहले से अच्छा हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता। आप ये संकल्प लें कि आप आज से ही तंबाकू को छोड़ देंगे, या अगर आप एक साथ नहीं छोड़ सकते तो आप धीरे धीरे उसे छोड़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप डॉक्टरों की भी सलाह ले लें तो और ही अच्छा होगा। और मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपके घर परिवार में इस तरीके की लत किसी को है तो आप उस लत को छुड़वाने में उसकी मदद करें, ना कि उसे ताने मारें, उसे सुनाएं। उससे बेहतर है कि आप उनकी मदद करें और इस कर्ज से निकलने में उनका साथ दें। आइए किसान साथियों, कार्यक्रम में वक्त है आगे बढ़ने का इसी के साथ, और आज की जो हमारी खास वार्ता है उसके बारे में भी बात होगी, पर उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस

0: मध्य रेलवे का साथ दें। प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, आज की चर्चा में जब हमने बात करी थी कि किसान भाइयों की आय दुगनी हो, बढ़े, उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहता है, तो इसी विषय में आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं हमारी ये आज की खास भेंटवार्ता, जिसका विषय है कैसे हो किसान भाइयों की आय दुगनी, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर राममिलन से श्री कृष्ण की बातचीत।
4: किसान भाइयों नमस्कार। आजकल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि हमें किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, और किसान भाई अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो उनकी आमदनी दुगनी हो भी सकती है। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज डॉक्टर राममिलन जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है।
5: नमस्कार। धन्यवाद सर।
4: डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम जो किसान भाई हैं, अपनी आमदनी दुगनी करने के लिए किन बातों पर ध्यान दें? जो कोई भी फसल बोते हैं, काटते हैं, इनमें से हम आमदनी बढ़ा कैसे सकते हैं?
5: सर इसमें ऐसा होता है, किसान भाई विशेषकर ध्यान दें समय का। समय से अगर बुआई करेंगे आप तो उत्पादन अच्छा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम लगेगी। इससे जैसे कि खेती की तैयारी करें, खेत की तैयारी आप टाइमली कर देंगे तो उसमें टाइमली हम बो सकते हैं। बुआई समय से कर देंगे तो उसमें हमारा उत्पादन अच्छा होगा, रोग कम लगेंगे,
4: यानी उत्पादन बढ़िया मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आइए हम लोग शुरुआत से बात करते हैं। जैसे हमें जब किसान भाई हम लोग योजना बनाते हैं हमें कि कोई फसल की पैदावार लेनी है, तो सबसे पहले खेत की तैयारी करते हैं।
5: सबसे पहले खेत की तैयारी करें, और सबसे पहले तो मैं तो यही कहूंगा कि किसान भाइयों को अपने खेत की सॉइल टेस्ट करानी चाहिए
4: जी।
5: और सॉइल टेस्ट के लिए हर जिले में मृदा प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहाँ अपना खेत से सैंपल ले जाएं और उनको दें। जो भी चार्ज लेते हैं थोड़ा बहुत, वो अपना एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बना के देंगे
4: जी।
5: उसमें सारा अपना जमीन का होगा कि इसमें हमें कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है, उसके हिसाब से हमें उर्वरक उसमें अप्लाई करनी है।
4: तो यानी उससे अनावश्यक हम उर्वरक के प्रयोग से बचेंगे,
5: उससे बच सकते हैं,
4: उसमें कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी,
5: ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि किसान भाई कभी कभी उसे पता ही नहीं डोज दिए जा रहा है,
4: तो स्वाभाविक उसकी लागत बढ़ जाएगी,
5: लागत बढ़ जाएगी और सॉइल की भी हेल्थ खराब होगी उससे।
4: यानी उत्पादन भी कम होगा, उत्पादकता भी
5: कम होगी
4: जी। इसके बाद और किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है?
5: और ये सही समय पर सही बीज का चुनाव करें, और किसान भाई जब भी वो बीज लगाएं आधारित या प्रमाणित बीज लगाएं, क्योंकि उसकी अंकुरण क्षमता अधिक होती है। इससे क्या होगा कि हमें बीज की जो है मात्रा वो सही फिक्स लगानी है, ऐसा भी ना हो कि ज्यादा मात्रा में लगा देना है। आधारित बीज का ही प्रयोग करें किसान भाई, उससे उत्पादन भी अच्छा होगा, आधारित बीज का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा उन्हें।
4: एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम बीज डालना है उतना ही डालें,
5: हाँ।
4: और वैज्ञानिक तरीके
5: जी जी बिल्कुल
4: जी।
5: अगर एक्स्ट्रा डोज देंगे तो अगर कोई भी बीज है जैसे गेहूं में हम ज्यादा लगा देंगे तो वो ही कंपटीशन करेगा और एकदम उसमें टिलर कम निकलेंगे, उसे स्पेस भी रहना चाहिए, जो है उतनी बीज की मात्रा दी जानी चाहिए।
4: अक्सर किसान लोग सोचते हैं अगर हम ज्यादा बीज डाल देंगे तो ज्यादा पैदावार हो जाएगी,
5: नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, उत्पादन कम हो जाएगा
4: जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो रही कितना बीज बोना है, कैसे खाद डालनी है, इसके अलावा और किन चीजों पर ध्यान देना है?
5: जैसे सर बीज शोधन भी होता है, इसमें बीज शोधन करके ही बोया जाए, जो फफूंदी नाशकों से काफी है मार्केट में मिलती है, और ऐसा भी ना हो जाए और दुकानदार से ही ले लें, कृषि विज्ञान केंद्र हैं जैसे उनसे अपना सजेशन लें कि कौन सा हमें फफूंदी नाशक देना है, कि किससे हम संशोधन करें इससे तो हमें फफूंद नहीं लगेगा और अंकुरण भी अच्छा होगा, तो वही जाके अपना लें। और ऐसे ही नहीं डोज दे देनी है, उसमें भी जो स्पेसिफिक है उसमें पर्टिकुलर डोज है उसकी, उसके हिसाब से हम संशोधन करें बीज का, अच्छा रहेगा उसके लिए।
4: ये अब बात हो गई कि हमने बीजों का शोधन कर लिया, उपयुक्त मात्रा में खाद डाल ली, सही समय पर बुवाई कर दी, अब कौन सी खास बात इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है?
5: एक सिंचाई का रहता है सर
4: जी,
5: जिसमें किसान भाई कभी कभी सिंचाई इतनी दे देता है कि उसकी फसल ही गल जाती है, तो
4: उसमें पानी का जो देने का तरीका उस पर वैज्ञानिक तरीके से सिंचाई,
5: वैज्ञानिक जैसे
4: वो कौन कौन सी है?
5: जैसे सर एक तो ड्रिप इरीगेशन है, ये तो ड्रिप इरीगेशन जहाँ ऊंचे नीचे है बूम, उसमें बहुत अच्छा काम करती है, इससे 75-80% पानी की बचत होती है, और इसमें क्या है मजदूर लागत भी कम होती है। इसमें ड्रिप इरीगेशन में क्या रहता है, एक टैंकर होता है उसमें हम फर्टिलाइजर सारी दे सकते हैं,
4: पानी के साथ ही दवा भी दे दी,
5: दवा भी दे दी हमने,
4: खाद भी दे दी,
5: खाद भी दे दी, वो अब एक बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में जाता रहेगा, जितने पौधे को जरूर

0: है, इससे ग्रोथ रेट अच्छा रहता है पौधे का,
1: जी,
0: उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, बहुत
1: और
0: अच्छा होगा,
1: पानी का उपयोग भी कम होता है।
0: उपयोग भी कम होगा, कम सिंचाई, जैसे अपने क्षेत्र में तो पानी की भी कमी है, तो
1: जी
0: बहुत अच्छा है इसका।
1: जी इसके अलावा और कौन कौन सी बातें जिन पर हमें किसान भाई ध्यान देने की आवश्यकता है?
0: सर कीटनाशकों का प्रयोग, कीट बहुत कोप है, तो उसके लिए आप वैज्ञानिकों से संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्र हैं जैसे कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे संपर्क करें, तो वो जो दवा बताएं उसका प्रयोग करें। किसान भाई अपने मर्जी से ना दे दे के हाँ, या चला गया दुकानदार के पास, उसने दे दिया वही यूज कर दिया, वो भी
1: वो
0: जितना
1: गलत है।
0: पैसा दे दिया उसने बता दिया वो दे
1: अब
0: दिया।
1: डॉक्टर साहब यहां पर एक बात आती है, जो दुकानदार हैं जो कीटनाशक वगैरह बेचते हैं वो लोग अपने फायदे के लिए ज्यादा मात्रा बता देते हैं, तो ऐसे में किसान भाइयों को
0: बिल्कुल
1: चाहिए जो कृषि विज्ञान केंद्र कह रहा है उतनी संस्तुत मात्रा ही डालें।
0: वही मात्रा दें, अगर सर ज्यादा मात्रा भी किसान भाई देंगे तो उसका भी पौधे पर फर्क पड़ेगा, वो भी एक पौधा है, मर भी सकता है ज्यादा
1: जी
0: मात्रा से। कभी कभी देखा उन्हें को मिलता है कि किसान भाई इतना डोज दे देते हैं कि पौधा भी मर जाता है, कीट तो मरता ही है, पौधा भी चला जाता है उसके,
1: जी
0: किसान मित्र कीट है वो भी
1: जी
0: मर जाते हैं। ऐसा
1: जी
0: नहीं करना है कि किसान मित्र कीट भी मर जाए,
1: तो
0: तो
1: अगर हम
0: उसका
1: सही मात्रा में डालेंगे तो हमें
0: तो
1: फायदा
0: वो
1: मिलेगा।
0: फायदा रहेगा किसान के
1: डॉक्टर
0: लिए।
1: साहब अब फसल में कीटनाशक भी पड़ गए, दवा भी पड़ गई, खाद भी पड़ गई,
0: खरपतवार
1: अब
0: बचता है,
1: खरपतवार बचता है।
0: खरपतवार का बहुत बड़ा समस्या है, खरपतवार से किसान भाई का लगभग 35% नुकसान होता है, तो इसके बचने के लिए समय पे खरपतवार दें। ऐसा भी नहीं है कि अभी जरूरत है 20-25 दिन बाद खरपतवार पे दवा स्प्रे करना है, हम कर रहे हैं जाके 50 दिन पे,
1: तो नुकसान हो
0: तो
1: जाएगा।
0: नुकसान होगा, और एक तो डबल नुकसान, एक पैसा भी जाएगा किसान का और खरपतवार भी नहीं खत्म होगा
1: जी
0: और फसल भी बर्बाद हो जाएगी,
1: जी
0: तो इसका विशेष ध्यान रखना है समय का।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तमाम जानकारियां किसान भाइयों को, आजकल मोबाइल पर बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उसके बारे में मुझे बताइए।
0: ये किसान भाइयों को बहुत सारी जानकारी मोबाइल ऐप से ले सकते हैं, और यूट्यूब पे भी वैज्ञानिकों के चैनल बने हैं, उनसे यूट्यूब डाल के भी देखते हैं। कोई
1: जी
0: भी फसल का हम डालेंगे, हमारे फसल में जैसे कोई बीमारी है उसका डालेंगे तो वैज्ञानिक लोग उसका भी सजेशन दे रखा है, या फिर ऐप भी है उसका फोटो खींचो आप,
1: जी
0: अपलोड कर दो, उसमें सारा उसका ट्रीटमेंट क्या देना है, कौन सी बीमारी है ये या कौन सा कीट है, वो सब कुछ आ जाता है। तो ऐसा कर सकते हैं किसान भाई, खेत पे गए, हमने देखा है कि यहाँ कोई कीट लगा है, उसका फोटो खींच लो और ऐप पे लोड कर दो, तो उसका पूरा आ जाएगा, इसमें कौन सी में दवा देनी, किससे मर जाएगा ये,
1: यानी
0: ऐसा।
1: पूरी जानकारी आपके हाथ में मोबाइल पर मिल
0: जी
1: जा
0: जी
1: रही है।
0: बिल्कुल
1: अब फसल कट गई, कटने की तैयारी है, तो इसमें क्या ध्यान देने की आवश्यकता है?
0: सर, ये मैच्योरिटी का ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं हमारी फसल एकदम हार्वेस्टिंग स्टेज पर कटाई के हो गई और किसान भाई कभी कभी लेट कर देता है कटाई में, तो उसमें क्या होता है बाली फूटने लगती है, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है किसान भाई का,
1: जी
0: क्योंकि फसल ही तैयार हो गई और हमारा आधा दाना नीचे गिर जाएगा,
1: तो नुकसान हो जाएगा,
0: नुकसान होगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें, उसे
1: समय पर कटाई की जाए।
0: कटाई समय पर करें।
1: अब बेचने कहाँ जाए?
0: सर ये ई मार्केटिंग चल रहा है,
1: जी
0: इसमें बहुत अच्छा है, मोबाइल से देखें कि कहाँ मंडी पूरे उसमें ई मार्केटिंग में दिखेगा, तो उसमें देखें और
1: जहां
0: मंडी
1: अच्छा दाम
0: के
1: मिले,
0: अच्छा दाम मिले वहां ले जा
1: और
0: सकते
1: वैसे भी
0: हैं।
1: इस बार देखा गया कि समर्थन मूल्य से अधिक दाम भी मिला।
0: गेहूं का भी समर्थन
1: जी
0: मूल्य, काफी ऐसे
1: जी
0: अनाज है इनका समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम मिला है।
1: जी तो डॉक्टर साहब ये तो रही कि जो हम फसलें उगाते हैं, अब इसके अलावा और हम क्या काम कर सकते हैं? फसल के साथ साथ भी हम कुछ काम करें जिससे हमें
0: बिल्कुल
1: पैसा
0: कर
1: आमदनी हो
0: सकते हैं,
1: सकती।
0: पसंद के साथ साथ किसान डेयरी फार्मिंग कर सकता है, जैसे तो अगर उसने 4 भैंस रख ली तो अगर 10 लीटर भी दूध देंगी तो 40 लीटर दूध होता है,
1: जी
0: तो फार्मिंग के साथ उसका वो भी अलग एक इनकम
1: अगर
0: हो सकती
1: चालीस
0: है।
1: लीटर का दूध का हम अगर एक उदाहरण लें और अगर 50 रुपये लीटर भी इसका दाम जोड़ें तो
0: जी
1: एक
0: जी
1: अच्छी खासी आमदनी प्रतिदिन की हो गई है।
0: प्रतिदिन की हो जाएगी,
1: अच्छा डेयरी फार्मिंग के साथ और क्या क्या हो सकता
0: डेयरी
1: है?
0: फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, इस टाइम पोल्ट्री का भी बहुत
1: जी
0: अच्छा
1: हाँ,
0: क्रेज
1: उसमें भी
0: है,
1: आमदनी
0: इसमें
1: है।
0: इस
1: जी
0: समय पोल्ट्री के लिए तो अनुदान भी है किसान के लिए,
1: जी
0: उस
1: इसे मछली पालन कर सकते
0: मछली
1: हैं।
0: पालन है और मधुमक्खी पालन है, जैसे हमारा कोई फसल लगी है उसमें मधुमक्खी के चार हमने वो डब्बे रख दिए तो एक्स्ट्रा इनकम ही तो मिलेगी,
1: जी
0: उतने में हम जा रहे हैं उसे भी देख ले रहे हैं, फसल को भी मधुमक्खियों को भी देख ले रहे हैं। इस टाइम सर एक ऑर्गेनिक का चल रहा है,
1: जी
0: उसमें किसान भाई अगर ऑर्गेनिक थोड़ा सा अपना फील्ड है उसका, मैं तो कहूँगा 1 एकड़ भी करें ऑर्गेनिक फार्मिंग,
1: जी
0: तो उसमें क्या है रेट डबल ट्रिपल मिल रहा है हमें,
1: जी
0: जैसे हम अभी ये कर रहे हैं पेस्टिसाइड यूज, तो उससे ऑर्गेनिक अगर सब्जी उत्पादन या कोई भी करें मार्केट में ले जाके नॉर्मली डबल ट्रिपल ले सकता है।
1: जी तो किसान भाई आपने देखा है कि अगर हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी आमदनी बड़े आराम से दोगुनी या उससे भी ज्यादा
0: हाँ
1: कर
0: ज्यादा कर
1: सकते
0: सकते हैं,
1: हैं। आपकी कृषि में लागत भी कम आएगी और जो बिक्री करेंगे उससे अच्छी आमदनी होगी, अधिक उत्पादन होगा और अच्छा लाभ मिलेगा। तो

0: किसान भाइयों, हम डॉक्टर साहब को देते हैं धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बढ़िया जानकारी दी कैसे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो किसान साथियों, अभी आपने सुनी हमारी आज की खास भेंट वार्ता, जिसका विषय था कैसे हो किसान भाइयों की आय दोगुनी, जिसमें आपने सुना डॉक्टर राममिलन से श्री कृष्ण की बातचीत को। और अब वक्त है गोवर्धन चलने का, यानी कि मानसिक रूप से गोवर्धन की परिक्रमा देने का भाई। पर उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
3: आपकी गिनती देश किसान जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

साथियों, वक्त हो गया है विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले जानकारी मौसम की। आज का अधिकतम तापमान जो कि 37 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही साथ बारिश के भी आसार बने हुए हैं। इसी के साथ बात करें कल के मौसम की, यानी कि सोमवार 1 जून की, तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ साथ न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही साथ आसमान साफ रहेगा, धूप भी खिलेगी, इसीलिए खिली हुई धूप में जो जो आपको अपनाना है वो सब अपनाएं। घर से बाहर जाएं तो ज़रूरत के वक्त ही घर से बाहर जाएं, वरना घर से बाहर ना जाएं, सारे एहतियात बरतें। और इसी के साथ मुझे विदा दें, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और अब समय हो चला है श्रमिक साथियों के कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

स्वागत है आप सभी मेहनतकश श्रमिक भाई बहनों का आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। सभी श्रमिक साथियों को आरती चक्रवर्ती का नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी इस गर्मी के मौसम में अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। साथियों, मुझे हर किसी से यही सुनने को मिलता है कि गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखें, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी यही कहा। साथियों, गर्मी के नुकसान तो साफ दिखते हैं, जैसे लू लगना, थकान, पानी की कमी। इसलिए हमारी बात सिर्फ गर्मी में अपना ध्यान रखना पर ही अटक जाती है। लेकिन क्या कभी ये क्यों नहीं सोचते कि गर्मी में कई सारे फायदे भी होते हैं, तो हम उन फायदे को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि गर्मी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय, जिससे कई संक्रमणों का खतरा कम हो जाता है। धूप से मिलने वाला विटामिन डी हमारी हड्डियों और सेहत के लिए बहुत लिहाज से भी गर्मी का मौसम बहुत जरूरी है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, भिंडी, मूंग और इन्हें हम जायद फसल बोलते हैं और ये किसानों की अतिरिक्त आय का अच्छा साधन बनती है। इसके अलावा गर्मी हमें अपनी जीवन शैली को सरल बनाने, पानी के महत्व को समझाने और शरीर की देखभाल का मौका भी देती है। और इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम गर्मी के नुकसान ही देखें, बल्कि हमें ये समझना है मौसम का अपना संतुलन और महत्व होता है। सही सावधानियों के साथ गर्मी भी हमारे जीवन का उपयोगी हिस्सा बन जाती है। और साथियों, जिस तरह हम अपने शरीर को गर्मी और धूप के नुकसान से बचाते हैं, उसी तरह हमें तंबाकू जैसे धीमे जहर से भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। तंबाकू का सेवन शरीर की ताकत को कम कर देता है, फेफड़ों और दिल को कमज़ोर करता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। साथियों, हर साल 31 मई यानी आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 1987 में पहली बार इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा और 1988 में WHO ने इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में जागरूक करना है। तंबाकू चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो या गुटखा, ये सभी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सेवन धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर बना देता है और कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का कारण भी बन जाता है। आज के समय में जब जीवन की गति तेज है, कई लोग तनाव और थकान की वजह से सिगरेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ये गलत आदत जीवन को बड़े खतरे में डाल सकती है। साथियों, हमें ये समझना होगा कि स्वस्थ शरीर ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के ना तो काम संभव है और ना ही सुखी जीवन। आइए इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम खुद भी तंबाकू से दूर रहेंगे और दूसरों को भी तंबाकू के नुकसान के प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। साथियों, वक्त हो चला है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, CSIR क्या है? उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा। पेश है आपके लिए एक प्यारा सा गीत।

साथियों, नई खोज में आज हम बात करेंगे ऐसी तकनीक की जो भविष्य में कामगारों और श्रमिकों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने AI आधारित स्मार्ट चश्मा विकसित किया है। ये चश्मा केवल देखने का काम नहीं करता, बल्कि इसमें कैमरा, माइक्रोफोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक भी लगी हुई है। अगर कोई मजदूर किसी मशीन की मरम्मत कर रहा है और उसे किसी पुर्जे के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये चश्मा तुरंत जानकारी देने में मदद करता है। ये कई भाषाओं का अनुवाद भी कर सकता है, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के बीच संवाद आसान हो जाता है। कुछ स्मार्ट चश्मे खतरे की स्थिति जैसे धुआं, आग या किसी बाधा के बारे में भी चेतावनी दे सकते हैं, जिससे कार्यस्थल की सुरक्षा बढ़ेगी। तो साथियों, विज्ञान और तकनीक की ऐसी नई खोजें न केवल काम को आसान बना रही हैं, बल्कि कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। साथ ही इस चश्मे में आप अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, उसे बिना हाथों के इस्तेमाल किए कैप्चर या रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पर साथियों, विज्ञान और तकनीक ऐसी नई खोजों से हमारे जीवन को सरल, सुरक्षित और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए केवल नई तकनीक ही नहीं, बल्कि

0: की सही आदतें और स्वस्थ जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी है। जैसे एक ओर आधुनिक तकनीक हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह बुरी आदतें हमारी प्रगति में बाधा बन जाती हैं। और ऐसी ही एक गंभीर समस्या है नशे की लत, जो न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उसके परिवार, समाज और भविष्य को भी प्रभावित करती है। नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति की सोच, सेहत और सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसी के साथ आइए सुनते हैं भेंटवार्ता मुख कैंसर कारण और निवारण। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय से डॉक्टर राजेंद्र नारायण की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों ऐसी समस्याएं दांतों में देखने को मिल रही हैं जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं और पता लगता है कि वो बहुत गंभीर बीमारी के रूप में परिवर्तित हो गई। दांतों के दर्द को सामान्य दांत दर्द मानकर या सामान्य दर्द मानकर लोग लापरवाही कर जाते हैं और वो धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैंसर जैसे घातक बीमारी में बदल जाता है और फिर वो जानलेवा भी साबित होती है। ऐसे में मुंह का कैंसर कितना घातक है, मुंह के कैंसर को किस प्रकार उसको तत्काल उसकी पहचान की जाए और उसके बाद उसका इलाज किया जाए, आज इसी विषय पे आगरा के प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये कैंसर की बात जैसे ही आती है लोगों में एक सामान्य फीलिंग है कि बहुत सिहरन होने लगती है और लोग मान लेते हैं कि अब तो प्राण गए। तो डॉक्टर साहब ये जो कैंसर की बात आती है इतना घातक और इतना जानलेवा समझ लिया जाता है कि पता नहीं अगर मुंह में कैंसर हो रहा है तो वो छोटी समस्या है कि कितनी गंभीर समस्या है, इसको कैसे देखा जाए? मुंह का कैंसर जो है वो कितना घातक है और कैसे उसको समझना चाहिए आम आदमी को?
2: जी बिल्कुल, कैंसर का नाम जैसे ही मरीज को पता चलता है या समझ में आता है कि कैंसर हो गया है तो अंदर से इंसान बीमारी से तो घबराता ही है और एक डर उसको अंदर से कमज़ोर करने लगता है कि मेरी लाइफ जो है अब कंप्रोमाइज होने वाली है। तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि मुंह का जो कैंसर है उसको लेकर के इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंह का कैंसर पूरी तरीके से जो है इलाज से ठीक होने वाली बीमारी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा इलाज जो है सीवियर नहीं होता कि आपका लाइफ कंप्रोमाइज हो। बस शर्त है कि इंसान मुंह के कैंसर को लेकर के लापरवाही ना बरतें और वो जितना जल्दी हो सके उसका इलाज शुरू करा लें। मुंह के कैंसर में सर्जरी के द्वारा पूर्णतया उसमें इलाज से आराम मिल जाता है और उसका रिकरेंस भी नहीं होता है, दोबारा से भी नहीं पनपता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग ये जब बनता है जब हम डर के मारे और इलाज में जाते ही नहीं है, उसकी स्टेज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि उसे मुंह में कैंसर हुआ है या कहीं डायग्नोस हुआ है तो बेझिझक डॉक्टर के पास जाकर के और उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए और वो जानलेवा बीमारी नहीं है। श्रोता इसको विशेष ध्यान रखें, मुंह का कैंसर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे दांतों में दर्द की समस्या तो सामान्य होती है, लोग समझते हैं कि दांत में दर्द है, कोई कीड़े लगे होंगे या कोई सामान्य चीजें होंगी जो कि ठीक हो जाएंगी, और कभी कभी दांतों से पस निकलना, खून निकलना, ये भी सामान्य बात है, ये पायरिया की समस्या है या फिर कहीं चोट लग जाए या कुछ चुभ जाए तो वो भी दर्द होता है। लेकिन वो कौन सा स्टेज है जहाँ की व्यक्ति को ये समझना आवश्यक हो जाता है कि ये सामान्य रक्तस्राव नहीं है, ये सामान्य दर्द नहीं है बल्कि ये तो कैंसर के शुरुआती लक्षण है? कहाँ से आप इसकी पकड़ करते हैं डॉक्टर साहब?
2: जी कैंसर में क्या होता है, ज्यादातर जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो हमें सामान्य बीमारी की तरह ही शुरू होते हैं। मरीज को दर्द भी होता है, मुंह के अंदर में खाना पीना खाते समय मिर्च मसाला जलन ये भी चीजें उसको लगती हैं, लेकिन मरीज इन चीजों को झेलते हुए समय निकालते हुए और इनको क्रॉस कर जाता है। तो ज्यादातर केसेस में कैंसर का जो बीच का टाइम होता है उसमें मरीज को पेन होना, दर्द होना, ये चीजें खत्म हो जाती हैं। वो एक क्रॉनिक लंबे समय से चलता हुआ घाव बन जाता है जिसमें ज्यादा दर्द नहीं होता है और उसका साइज जो है इंक्रीज करने लगता है। तो पहली चीज, अगर दर्द है, जलन है, छाला लंबे समय से दिख रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है, उसको जो है तुरंत दिखाना है, जांच कराना है उसका। कहीं से लंबे समय से ब्लीडिंग हो रही है वह भी जो है हो सकता है कि कैंसर का कारण हो। तो कोई भी चीज लंबे समय से, महीनों से आपकी नजर में है और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं तो वो गलत है।
1: तो अगर किसी ने दंत चिकित्सक को दिखाया तो दंत चिकित्सक कैसे कंफर्म करते हैं इसको कि ये कैंसरस है?
2: कैंसर के लिए पहले तो जो दंत चिकित्सक होते हैं वो अपने आप में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उसका

0: निकली। आंखों से देखने पर ही जो है चीजों को ऐसा पता चल जाता है कि ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, इसमें
1: जी
0: कुछ अलग है। तो वो हम उसका टेक्सचर देखते हैं कि नॉर्मल जो मुंह की स्किन का जो कलर है वो कैसा है, अगर वहां पर रेडनेस है या सफेद दाग धब्बे नजर आ रहे हैं या कोई छाला नजर आ रहा है, तो हम उसको सस्पेक्ट करते हैं कि ये जो है कैंसर जैसा हो
1: हो
0: सकता है।
1: सकता
0: तो फिर उसको मरीज को बताया जाता है कि ये आपका नॉर्मल नहीं लग रहा है, कुछ अलग है। इसके लिए हम उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा
1: टुकड़ा
0: मांस के पीस का वहां से निकालते हैं और उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं।
1: जी
0: बायोप्सी एक जो है कैंसर की प्राइमरी जांच है, जिसमें ये पता चलता है कि ये बीमारी कैंसरस है या नहीं है। तो बायोप्सी कराने से मरीजों को बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। मरीज ऐसा सोचते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ जाता है।
1: जी ये भ्रांति बहुत
0: हाँ
1: लोगों में है और इसलिए
0: तो
1: वो सोचते हैं कि इसमें इंजेक्शन जाएगा या
0: जी
1: कोई
0: जी
1: औजार जाएगा
0: जी
1: तो
0: जी
1: गड़बड़ हो सकता
0: लेकिन वो बहुत प्राइमरी स्टेप है, उसको जरूर परफॉर्म करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने बोला है बायोप्सी करानी है तो वो करानी ही है, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हुई कैंसर की पहचान कैसे करें, कैंसर को कैसे कंफर्म करें, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कैंसर होता ही क्यों है मुंह
0: जी
1: में, खास
0: जी
1: करके जहां, हालांकि मुंह तो चलने वाला अंग है, जहां की बार बार चलाना है, चबाना है, काटना है, कतरना है, तो वहां पर ये चीजें अगर आती हैं। जैसे सामान्य रूप से तो ये कहा जाता है कि अगर रेगुलर इरिटेशन कहीं होता है किसी अंग में, या रेगुलर कोई दबाव बनता है या कटिंग होती है, तो वहां पर ये संभावना हो सकती है, लेकिन यहाँ मुंह में तो हमेशा ही ये काम चलता रहता है। फिर क्या ऐसी खास बातें हो जाती हैं जो कि कैंसर का कारण बन जाती
0: जी
1: हैं?
0: देखिए, मुंह के कैंसर का जो कारण है उसमें 95% जो मुंह के कैंसर के मरीज जो हमारे पास में आते हैं उनका कहीं ना कहीं तंबाकू के सेवन का हिस्ट्री
1: जी
0: जो है रहा होता है। या तो वो बहुत पहले से खा रहे होते हैं, फिर उन्होंने बंद भी कर दिया है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। अगर हमारी बॉडी किसी चीज को लेकर के सेंसिटिव है और उसने वो जो हमने तंबाकू कंजप्शन किया है उसकी वजह से अंदर रिएक्शन होकर के अंदर से कैंसर की सेल्स जो है बन गई हैं, तो वो लाइफ की किसी भी स्टेज में जो है बाहर आ सकती हैं। तो ये नहीं है कि हमने 10 साल पहले खाया था, अभी 10 साल से नहीं खा रहे हैं, तो अब हमें कैसे हो गया, हो सकता है। तो 95% केसेस में तंबाकू में भी जो इसका मेन जो रीजन है वो है हमारा बीटल नट, जो कि पान में इस्तेमाल होने वाली, जिसे आम भाषा में कठहुआ सुपाड़ी बोलते हैं, वो इसका मेन कारण है। उस सुपाड़ी के अंदर में एक एंजाइम निकलता है जिसे हम कटेचिन बोलते हैं। कटेचिन हमारी मुंह की स्किन से रिएक्शन करता है और वो कैंसर सेल को जनरेट करता है। तो श्रोताओं, जो हमारी सुपाड़ी है वो चाहे शहद में लिपटी हुई है या जहर में लिपटी हुई है, वो हमारे लिए हानिकारक है। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें जो एक कॉमन पॉपुलेशन में आदत बन गई है कि हमारा साथ वाला इंसान 10 साल से खा रहा था उसको कुछ नहीं हुआ। जिसके साथ में बॉडी सेंसिटिव है उसको रिएक्शन करेगा और उससे चीजें डेवलप होंगी, और जिसको नहीं है उसको नहीं करेगा। तो एक इतनी भयानक बीमारी के लिए हम जिसको नहीं हो रहा है उसको उदाहरण ना माने, जिसको हो रहा है उससे सबक लें कि क्यों हुआ।
1: और ये तो जो सुपारी है वो तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन जो बाजार में जो पाउच में जो गुटखा मिलता है जिसमें कि बहुत सारे खतरनाक रसायन भी मिले हुए होते हैं, और उसका चलन जिस तरीके से बढ़ा है और खास करके हमारे युवाओं में जो बढ़ा है, आपने कहा कि जीवन में कभी 10 साल पहले भी खा के छोड़ दिया वो भी असर करता है, तो जो छोटे छोटे बच्चे जो इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, जो हमारे यूथ हैं वो पड़ जाते हैं, ठीक है जब तक उनके शरीर में ताकत है तब तक बचे हुए हैं, तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे में उनको कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है?
0: जी, जो लोग जितना अर्ली स्टेज से इसका सेवन कर रहे हैं उनको उतना उसका दुष्परिणाम जो है आ सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन्होंने खाया है वो चिंता में आ जाएं कि अब हमें बनेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अपने रोल मॉडल उन लोगों को बनाएं जो नहीं खा रहे हैं। जो लोग खा रहे हैं उनको समाज में गलत दृष्टि से ही देखा जाए तो ही हम इससे बचाव में आ सकते हैं। और जो पान मसाले वाली बात है तो उसके अंदर में बहुत सारे ऐसे चीजें मिलाई जाती हैं जिनसे हमारी स्किन का जो ऊपर का सरफेस है उसमें जैसे स्क्रैपिंग करते हैं इस तरीके से, उस स्किन में माइक्रो पोर्स बनाते हैं। उन पोर्स से उन एंजाइम्स का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में तेजी से होता है, जिससे हमारे दिमाग को एक अच्छी फीलिंग आती है। इसकी वजह से हमें आदत लग जाती है और हम बार बार उसको खाने लगते हैं। तो पान मसाला, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी, तंबाकू, खैनी और आज के दौर में जो महिलाएं तंबाकू युक्त जो मंजन कर रही हैं, वो बहुत बड़ा रीजन है महिलाओं के अंदर में कैंसर का कारण बनने का। जो लेडीजों में कैंसर डेवलप हो रहा है वो तंबाकू वाले मंजन से भी बहुत तेजी से फैल रहा है।
1: जी
0: तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है कि वो भी एक हानिकारक है। है, वो अच्छी चीज नहीं है,
1: अच्छी चीज नहीं है वो। तो श्रोता आप समझ गए होंगे कि ये जो हम अपने जीवन

0: में इन चीजों का जो ऐसा प्रयोग करने में रमे हुए हैं, पान, गुटखा, तंबाकू और इस तरह की चीजें, और वो जो तंबाकू युक्त या नशे युक्त जो मंजन है,
1: हाँ, जिनके कुछ नाम हैं बाजार में, जो
0: जी
1: काला मंजन
0: गुल
1: और
0: उड़ाकू और क्या क्या इस तरह के
1: तो
0: नाम
1: इस
0: है, ये
1: तरीके के नाम
0: बहुत
1: हैं जो मार्केट में प्रचलन में हैं, और लेडीज उनको मैंने देखा है कि वो एक एक घंटे तक उसको इस्तेमाल
0: जी
1: करते हैं। तो
0: जी
1: आप उसको इतने लंबे समय तक टोबैको को कांटेक्ट में रखेंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक
0: जी
1: चीज।
0: तो श्रोतागण, इसको तो बिल्कुल आज से ही आप प्रण करें कि हम इसे छोड़ देंगे, वरना कुछ भी हो सकता है। और कैंसर होने का मतलब है कि आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, और जीवन तो जितने दिन कैंसर रहता है उतना कठिन रहता है, लेकिन स्थितियां इतनी भी निराशाजनक नहीं है। इसका कुछ निदान भी होगा डॉक्टर साहब, क्या ये क्योरेबल है कि नहीं?
1: जी, मुंह का कैंसर है वो हमारा, अगर हमें जल्दी अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो इसमें केवल एक सर्जरी जो रहता है वो उसका 100% क्योर करने वाला इलाज है, जो कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के कैंसर में उसके 100% रिजल्ट है। लाइफ की कोई उसमें कमी नहीं रहती है। उसके बाद के जो स्टेजेज आते हैं वहाँ पे भी सर्जरी के साथ में हम रेडियोथेरेपी या मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 स्टेज तक का जो कैंसर है, ओरल कैंसर है, उसमें लाइफ को खतरा नहीं है। तो डरे नहीं, पहले तो जांच कराएं कि आप कौन सी स्टेज में हैं और आपका कैंसर कितना लोकलाइज है या जनरलाइज है। एक ये है कि कैंसर डेवलप हुआ लेकिन वो उतनी ही जगह पे है, वो जांच से ही पता चलेगा। आप जांच
0: जी
1: ही नहीं कराएंगे तो आप डर में जीते रहेंगे। और एक होता है कि वहां पे दिख रहा है वो छोटा है लेकिन वो गले की तरफ में हमारे अदर जो
0: जी
1: लिम्फ नोड्स हैं या जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वहां तक पहुंच गया है। तो जहां वाइटल स्ट्रक्चर्स तक पहुंच जाता है वहां पे थोड़ा लाइफ कंप्रोमाइज होती है, अदरवाइज जो लोकलाइज हैं वो सभी 100% सर्जरी से ठीक हो जाते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो समय रहते हुए दिखाएं और उसका इलाज संभव है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और हमारे श्रोतागण आपको फिर से आगाह करना चाहेंगे कि जो बुरी आदतें हैं, जो बुरे लत हैं, उनको तो आप तत्काल छोड़ दें। और शौक रखते हैं तो अच्छी चीजों का शौक रखें, गांव
1: जी
0: में
1: जी
0: रहते
1: बिल्कुल
0: हैं अगर
1: बिल्कुल
0: तो दूध दही खाएं और बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो खाएं, इस तरह के नशे वाली चीजों का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें। और अगर खुदा ना खास्ते अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी लग जाती है तो डरे बिल्कुल नहीं, उसका तत्काल इलाज कराएं, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरे नियम के साथ और डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर आप इसका इलाज कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, जांच कराते हैं, तो आप पुनः तंदुरुस्त हो सकते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, क्या कहेंगे चलते चलते हमारे श्रोताओं से कि इस बीमारी को किस रूप में बचा के रखें?
1: जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपकी जानकारी, नॉलेज, आप कैसे उससे बच सकते हैं। और वो
0: जी
1: नॉलेज जो है तभी आती है जब आपको कुछ भी लग रहा है मुंह के अंदर में, कुछ भी हानिकारक, चाहे वो गांठ है, चाहे वो अल्सर है, चाहे उसका कलर टेक्सचर चेंज हो रहा है, अपने जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट को जाके दिखाएं। एक डेंटिस्ट ऐसा डॉक्टर है जो ओरल कैंसर को आंख से पहचान सकता है, उसमें जांच की भी आवश्यकता नहीं
0: हाँ
1: पड़ती है।
0: हाँ
1: तो नियमित जो है डॉक्टर को चेक कराएं और इस गंभीर बीमारी से समय से पहले ही इलाज पा करके स्वस्थ रह सकते हैं।
0: आप आए और स्टूडियो में आपने इतनी अच्छी बातें बताई कैंसर के विषय में, मुझे लगता है कि इस बीमारी से बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप समय से और बल्कि समय पर इसके जांच करा के इलाज शुरू कर दें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू थैंक यू।
2: साथियों, अभी हम सुन रहे थे भेंट वार्ता, मुख कैंसर कारण और निवारण। वार्ताकार थे डॉक्टर अवधेश उपाध्याय और उनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण। अभी वक्त है अंतराल का।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, आपको आज का प्रश्न तो याद होगा, CSIR क्या है? CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। साथियों, मजदूर मंडल के ज्ञान सागर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भविष्य निधि के बारे में, और ये केवल आज की कमाई ही नहीं बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। साथियों, हम सभी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नौकरी या काम बंद होने के बाद बढ़ती उम्र में या किसी आपात स्थिति में आर्थिक सहारा कहाँ से मिलेगा? इसी जरूरत को ध्यान में रखकर भविष्य निधि

जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। साथियों, पीएफ यानी भविष्य निधि एक बचत योजना है। इसमें कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा हर महीने जमा होता है और नियोक्ता यानी संस्था भी उसमें अपना योगदान देता है और ये राशि कर्मचारी के नाम से जमा होती रहती है और उस पर ब्याज भी मिलता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो पीएफ आपकी मेहनत की कमाई का वो हिस्सा है जो भविष्य की ज़रूरतों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब साथियों, जानते हैं कि हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए पीएफ ज़रूरी क्यों है। मान लीजिए कोई श्रमिक 20 या 25 वर्षों तक नियमित रूप से काम करता है और उसके बाद उसके नाम पर पीएफ जमा होता रहता है। नौकरी छोड़ने या किसी विशेष परिस्थिति में उसे एकमुश्त अच्छी राशि मिल जाती है। साथियों, अक्सर हमारे श्रमिक भाई बहन अपनी पूरी ऊर्जा परिवार और काम में लगा देते हैं लेकिन भविष्य की आर्थिक योजना पर कम ध्यान दे पाते हैं। अगर कोई श्रमिक पीएफ और पेंशन की सुविधाओं से जुड़ा है तो वह अपने परिवार को अधिक सुरक्षित भविष्य दे सकता है। ये केवल बचत नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन का आधार भी है। साथियों, इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है। तेज गर्मी के बीच अचानक बारिश, जैसे कि हमने अभी देखा कि तेज धूप थी और फिर बारिश हुई और उसके बाद फिर गर्मी और थी। ऐसे में सर्दी जुकाम, बुखार, संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। मैं आपको एक सरल सा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काढ़ा बता रही हूँ। वैसे तो ये काढ़ा हमारी दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके लिए 3-4 पत्ते तुलसी, एक टुकड़ा छोटा अदरक, 3-4 काली मिर्च और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 कप पानी, इन सब चीज़ों को पानी में 10-12 मिनट तक उबालना है। इसके बाद इसमें स्वादानुसार शहद या गुड़ मिला सकते हैं। ये काढ़ा गले को आराम पहुंचाने और मौसम बदलने के दौरान शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक होता है। इसी के साथ साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। अनुमति दीजिए अपने रेडियो साथी आरती चक्रवर्ती को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण

0: पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sai Ramujtaba. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions to social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly radio program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Sajeev Alasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. He also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who launched a campaign to clean the Manorama River. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Iyer, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity issues. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत

0: अभिशाप के बारे में। तो डॉक्टर साहब हम ये चर्चा शुरू करें तो आप बताएं कि ये नशा क्या है, किन
1: जी
0: चीजों को आप नशे में रखते हैं?
1: नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। आज तंबाकू निषेध दिवस है, यानी कि आज हम लोग जो तंबाकू है उसके ऊपर ज़्यादातर लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि तंबाकू से रोग हो जाते हैं और इसको नहीं लेना चाहिए। ये आज का मेन विषय है। अदरवाइज अगर आप लोग बात करें नशे की, तो नशा जो तंबाकू का है और बाकी जो नशा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े से अलग है। इस
0: जी
1: मायने में कि जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप शराब पी के चले गए तो आपको शायद नौकरी से निकाल दिया जाएगा,
0: जी हाँ,
1: लेकिन आप अगर तंबाकू पी के
0: खा
1: स्मोक
0: रहे हैं।
1: खा के या बीड़ी पी के ऑफिस में जाएंगे तो आपकी नौकरी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: जी
1: तो ये एक सोशली एक्सेप्टेबल यानी कि सामाजिक रूप से अपनाया हुआ नशा है,
0: जी
1: इसलिए इसको छोड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है
0: जी
1: क्योंकि आपके बाकी सारे काम दिनचर्या चलती रहती है इस नशे के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस नशे को छुड़ाने के लिए।
0: हाँ, जो बीड़ी सिगरेट इस तरह का जो नशा है, तो ये अक्सर गुटखा वगैरह है, लोग खा ही रहे हैं
1: जी
0: और लोग खाते हैं, और इसका कोई सामाजिक इस तरह का नहीं है।
1: जबकि आप देखेंगे कि सारे सिगरेट के पैकेट पे, सारे बीड़ियों के पैकेट पे सरकार ने बड़े अच्छे से क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है और ये मौत के का सौदागर आप बन सकते हैं, अगर आप इस चीजों का नशा करेंगे आपकी मृत्यु भी हो सकती है।
0: जी
1: और पीने वाले भी सारे लोग जानते हैं कि इससे प्रॉब्लम होती है। मुझे शायद ही कोई नशा वाला ऐसा आदमी मिला हो, या आपको भी शायद आपने ध्यान दिया हो कि कोई ऐसा आदमी मिला हो कि जो नशा कर रहा हो और बोल रहा हो नहीं नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो
0: सबको पता है
1: सबको पता है कि उससे कैंसर
0: जी।
1: होता है, मृत्यु भी होती है, उस पे जो कैंसर पेशेंट के फोटो भी बने हुए हैं
0: जी
1: सिगरेट
0: हाँ
1: के
0: जी हाँ
1: ऊपर।
0: जी हाँ
1: और हमारे यहाँ एक और गुटखे का भी बहुत प्रभावधान है कि लोग गुटखा भी बहुत खाते हैं। तो ये दोनों एक ही तरह के नशे हैं और इनकी बड़ी उपचार बड़ा आसानी से हो सकता है। एक ही चीज जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है कि पेशेंट को कैसे मोटिवेट करें नशा छोड़ने के लिए। बहुत सारे मरीज तो मानते ही नहीं है कि उन्हें नशे का रोगी हैं। एक बार अगर वो मान जाते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा उपचार है उनके
0: हाँ
1: लिए।
0: डॉक्टर साहब, कई बार मैं देखता हूं कि हमारे कई मिलने वाले हैं या परिचित हैं, ये सामान्य रूप से जो लोग शराब सिगरेट या तंबाकू या और भी कोई ड्रग या और कोई नशा करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो नशे को छोड़ दें, उससे मुक्ति पा लें, उनके परिवार वाले चाहते हैं और वो खुद चाहते हैं, लेकिन कई बार उनको ये नहीं मालूम होता है कि इसके लिए हम कहाँ जाएं, किससे मिलें, क्या किसी इसके लिए भी कोई डॉक्टर होते हैं क्या?
1: बहुत अच्छा सवाल आप पूछा आपने, क्योंकि हमारे समाज में जब किसी आदमी की हड्डी टूट जाती है तो उसे मालूम है हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाना है, आदमी को मलेरिया हो जाता है तो उसे मालूम है फिजिशियन को दिखाना है, लेकिन अगर कोई आदमी नशा कर रहा है तो उसे मालूम ही नहीं किस डॉक्टर को दिखाना है।
0: जी
1: जब तक उस नशे से कैंसर ना हो जाए या शराब जैसे नशे से लिवर का सिरोसिस ना हो जाए, तब तक वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है, क्योंकि उसे सब लोग बोलते हैं कि ऐसे छूट जाएगा, उसे मालूम ही नहीं है किस हेल्प के लिए जाना चाहिए। तो
0: जी
1: इस सवाल का जवाब यह है कि ऐसी हेल्प के लिए नशा मुक्ति केंद्र होते हैं और नशा मुक्ति विशेषज्ञ भी होते हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हम लोग जो होते हैं हम इसी विषय को देखते हैं। तो
0: अच्छा,
1: आपको साइकेट्रिस्ट यानी मानसिक रोग विशेषज्ञ के बारे में जानना चाहिए और उनके पास जाना चाहिए।
0: यानी कि अगर नशे से छूटना है, अगर आपको नशे से मुक्ति पानी है, तो आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाकर उनसे अपनी इस समस्या का निदान पा सकते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसमें
0: अच्छा
1: कुछ दवाइयां इफेक्टिव होती हैं और साथ में काउंसलिंग जो हम लोग पेशेंट की करते हैं वो बहुत इफेक्टिव होती है।
0: जी, अच्छा कुछ हम देखते हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मतलब नशा मुक्त भारत ये बनाने
1: जी
0: का अभियान चल रहा है,
1: जी
0: और जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसका
1: जी
0: नोडल मिनिस्ट्री है इसकी,
1: जी
0: तो उनके आंकड़े में पढ़ रहा था कि पूरे देश में लगभग 500 के आसपास नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं,
1: जी
0: तो जहां पर लोगों को नशे की लत से छुड़ाने के लिए
1: जी
0: उनको बताया जाता है। तो ये नशा मुक्ति केंद्र क्या होता है और वहां पर क्या चीजें होती हैं वहां?
1: जी सरकार ने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया है, जिसे जो एनजीओज होते हैं जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं उसे फाइनेंशियल मदद देती है सरकार,
0: जी
1: क्योंकि सरकार ने देखा कि जब हम लोगों ने उनको आंकड़े दिए, जब जो सर्वे हुआ उसमें आंकड़े दिए, तो वो लगभग 5 से 10% के आंकड़े थे कि लगभग हिंदुस्तान की 5 से 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको नशे की आदत हो गई है,
0: जी
1: जिसको
0: हाँ जी
1: जिसको
0: हाँ
1: हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं सब्सटेंस डिपेंडेंस सिंड्रोम,
0: जी
1: यानी कि SDS हो गया है उसको, मतलब अब इनको दवाई की जरूरत है, ये ऐसे नहीं छोड़ पाएंगे, इनको केंद्र में डालना ही पड़ेगा। तो
0: अच्छा
1: ऐसे लोगों के लिए सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों को, जो कि जो गवर्नमेंट के खुले उसके अलावा जो गवर्नमेंट के नहीं थे एनजीओ के थे उनको फाइनेंशियल एड दिया, तो ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों में अच्छा इलाज उपलब्ध है। लेकिन बहुत सारे
0: मतलब मैं यहीं पर एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, क्या अपने आगरा में भी कोई ऐसा नशा मुक्ति केंद्र है?

0: जो सरकार की ओर से जिसको फंडिंग होती हो, या इस तरह का कोई है?
1: जी, सरकार की ओर से जो फंड किया हुआ नशा मुक्ति केंद्र है, कोई अलग से नशा मुक्ति केंद्र एक भी नहीं है।
0: अच्छा,
1: जो जनरल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, जो साइकेट्रिक वार्ड्स हैं, वहीं हम लोग नशे का इलाज करते हैं, नशे वाले।
0: जी,
1: अलग से कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। और जितने भी प्राइवेट वाले हैं, वो भी कोई भी अभी तक कोई लाइसेंस नहीं लिया है सरकार से। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस की आप जो
0: जी
1: बात कर रहे हैं, उनका लाइसेंस कोई भी अभी आगरा में किसी के पास भी
0: किसी
1: नहीं
0: के पास
1: है,
0: नहीं है।
1: किसी के पास नहीं
0: तो
1: है।
0: अक्सर हम देखते हैं कि तमाम सारे विज्ञापन आते हैं कई बार कि नशा मुक्ति केंद्र, नशा
1: जी,
0: छुड़ाएं या इस तरह का करें, तो ये सब फर्जी है इसका मतलब?
1: ये सब इलीगल रूप से चल रहे हैं। इसमें जो मान्यताएं होती हैं, जैसे एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, सोशल वर्कर होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, उसका इतना एरिया होना चाहिए, एक दवा की दुकान होनी चाहिए। बाय द वे, क्योंकि बहुत सारे लोग पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नशा एकदम से छोड़ते हैं, तो उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स आते
0: जी,
1: हैं। उन विड्रॉल सिम्टम्स में पेशेंट की जान भी जा सकती है। जैसे आपने नशा अगर शराब का एकदम से छोड़ा, तो आपके दौरे पड़ सकते हैं, दौरे में आप एस्पिरेट कर सकते हैं, उसमें आपको
0: वो
1: हाइपोक्सिया
0: मतलब
1: में जा सकते
0: जो
1: हैं,
0: रोगी है वो भी
1: डेथ।
0: वायलेंस हो सकता है।
1: रोगियों में भी वायलेंस हो सकता है, क्योंकि
0: जी
1: बहुत सारे जो नशा मुक्ति वाले नशा वाले पेशेंट होते हैं, उनमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है,
0: जी
1: क्रिमिनल्स होते हैं। तो इन सब के लिए एक मान्यता बनाई गई है कि ये चीजें मान्यता होनी चाहिए केंद्रों में। तो वो आगरा में तो फिलहाल किसी के पास नहीं है।
0: अच्छा, तो यानी कि नशा मुक्ति केंद्र को खोलने के लिए भी कुछ लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है?
1: जी, जो सरकार ने किया है, हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर बनाया है। जो यूपी में जो नोडल ऑफिसर है, वो लखनऊ में है। उन वहां पे आप अपना एप्लीकेशन देंगे कि हमें ये नशा मुक्ति केंद्र खोलना है और हमारा ये हमारे पास है, तो वो आके इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन करने के बाद आपको एक लाइसेंस देते हैं नशा मुक्ति केंद्र का।
0: जी,
1: तो ये फॉर्मेलिटी है जो जरूरी है।
0: आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।
2: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, नशा एक अभिशाप, वार्ता का डॉक्टर सागर लवानिया से नीरज जैन की बातचीत। और अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे हमारे दिल्ली लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर

0: अपने विचार रखें। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
2: कि बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
0: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
3: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो, क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन

0: irgovin पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी DGP मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड, निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति CMO के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का CMO बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का CMO बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर GP गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
1: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता, और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्याऊ और धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
0: वाराणसी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। IPL 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। RCB ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी DGP। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारी ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना।
2: और ये
4: मेरी गुड़िया की ना।
5: पर दादी, आपके नाम?
6: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: RBI कहता है जानकार।

0: रहिए।
1: हम आकाशवाणी की
2: आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का।

कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी, और आज हम बात करने वाले हैं अपने देश की नदियों की। भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी नदी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन नदियों में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भारत में नदियों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको इन पवित्र नदियों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि भारत की इन पावन नदियों का उद्गम कहां से होता है और किन किन राज्यों से होकर ये नदियां गुजरती हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इन नदियों को अलग अलग स्थानों पर किन नामों से जाना जाता है। तो नदियों के सफर पर चलेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये मधुर गीत।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

सिर्फ एक नदी नहीं, माँ के रूप में माना जाता है। भारत में गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है। भारत में गंगा नदी को माँ गंगा, गंगा जी, गंगा मैया, देवी गंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आपको बता दें कि गंगा भारत की तीसरी और सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अपने देश की नदियों की। अंतराल से पहले आपको, जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको भारत की पावन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, किन किन राज्यों से होकर ये नदियाँ गुजरती हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी का सबसे अधिक धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और बनारस, प्रयाग और हरिद्वार से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में गंगा को

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और आज हम बात कर रहे हैं पवित्र नदियों की। अभी हमने गंगा नदी की बात की। धार्मिक पुराणों के अनुसार यमुना नदी को भगवान श्री कृष्ण की संगनी भी कहा जाता है। भारत में यमुना नदी को मां का दर्जा दिया गया और यमुना नदी को भी मां का दर्जा दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमुना नदी भक्ति का प्रतीक है। यमुनोत्री से निकलकर यमुना नदी दिल्ली, आगरा और इटावा से होकर प्रयागराज में गंगा नदी में मिल

जाती है। यमुना नदी को यमुना मैया के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक स्थान से निकलकर नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। यूं तो भारतवर्ष में हर जो नदी है वो हमारी माँ के समान ही है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। आगे आपको बताएंगे कावेरी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, लेकिन पहले चलते हैं इस गीत के सफर पे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं नदियों की। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी दक्षिण की सबसे प्रमुख नदी है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। कावेरी नदी को भी भारत में माँ का दर्जा दिया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से एक माना जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो, अरुणाचल में डेही और असम में ब्रह्मपुत्र और चीन में यालू, त्सांग, पू, चियांग और यरलुंग, जेंगबो, जियांग के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला में ब्रह्मपुत्र नदी को जामुन नदी और असम में शोक नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत देश में माँ के रूप में नदियां पूजनीय है और यही प्रकृति का विशेष उपहार भी है, क्योंकि उनको बनाने वाला विशेष चित्रकार भी है।

श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में आज के लिए बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। रात्रि के 8 बज चुके हैं, अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाने नए पुराने का। तो सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम था बेताब। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा था आर डी वर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल जले से। आवाजें हैं अजय देवगन पूर्णिमा की, शब्द रचना जावेद अख्तर की, संगीत रचना अनु मलिक की।
1: राख के ढेर में जलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
3: दिल

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

साधना सरगम की आवाज में अभी आपने सुना विश्वात्मा फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा था विजू शाह ने। अब सुनते हैं उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का गीत। शब्द रचना समीर की, संगीत रचना अनु मलिक की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आपने सुना फिल्म दिल तो पागल है से। आवाजें थी लता मंगेशकर उदित नारायण की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म क्रिमिनल से। आवाजें हैं कुमार सानू, अलका याग्निक की। इंदिवर की रचना को संगीत से संवारा है MM करीम ने।

चित्रा की आवाज़ में अभी आपने सुना बॉम्बे फिल्म का गीत। महबूब की रचना को उस संगीत से संवारा था एआर रहमान ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं साधना सरगम मुर्तजा कादिर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है साथिया। गुलजार की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने।

साथिया फिल्म में साधना सरगम मुर्तजा कादिर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी।

0: और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश के अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मोहंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर

0: खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkhom town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija

0: defeated Indonesian combination of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alfian 18-21, 21-17, 21-16 in the final to win their first title in 2 years. The Indian pair had won the Thailand Open in May 2024. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia has congratulated the Indian men's doubles pair on winning the Singapore Open title. In IPL cricket, the high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru is underway at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Put into bat, Gujarat Titans were 143 for 7 in 18.4 overs when reports last came in. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and opted to field. Both teams are aiming for their second IPL title. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and West Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkhon town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासिद के तहत उनके गैर मामूली ताबुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदामात और हुसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वालशेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तई उनके ताबुन को भी सराहा।
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान।

0: से। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: खेल कूद के मैदान में भारत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरेंद्र वीर सिंह और उन्मेष गुजर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पाउंडवंशी संतलत के मक्के महारिषि बलार्जुन से मुतल्लिक छठी और सातवीं सदी की तीन नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया।
0: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश व जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन ताबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हुसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिले कद्र गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वजीर आजम ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तिरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणी ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निजाम के माबैन मजीद इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल हैं। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जाजार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाके रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजामात के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निजाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि

0: इस्तेमाल की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में बीजेपी ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में बीजेपी ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाजे अक्सरियत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के तीसरे मरहले के तहत नंबर शुमारी का काम शुरू हो गया है। कमीशन ने बताया कि उन सभी अहल वोटरों को जिनके नंबर शुमारी फार्म इंतखाबी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को 28 जून को या इससे पहले मौसूल हो गए हैं, चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे में शामिल किया जाएगा। SIR का मकसद यह है कि कोई अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से न रह जाए और कोई नाअहल शख्स चुनाव फहरिस्त में शामिल न रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर नेज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वानिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है, क्योंकि रियासत में साबिका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हस्सा जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोकभवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउंगटुब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में

0: मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और जालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले दो दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने दो साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासद के तई अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj based on the archival inputs of All India Radio.
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगुंज।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीस फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रही।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना राधा।
3: छोड़ दो, देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर

0: एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूँ समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है। यानी उस वक्त से काम कर रही हूँ जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया। अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
3: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
2: जैसा कि आप सब जानते हैं मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों होते भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान में महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकल में हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोह कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
3: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
2: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेष बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुद्रा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल बात

0: गीत नाच गाना पाल पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैं बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपने एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

भारत की संस्कृति का दर्पण, प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

गुण सब मिल गर चतर गगा।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
2: नहीं अछूता हो जिस
1: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

जटिल कर्म पथ पर थर थर थर कांप लगे रुकने पग जटिल।

0: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।
1: बोल कहीं बोल, यहाँ तो न बोल श्यामा।

संस्कृति के उपकरण बदल गए, बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण, जीवन के बाने में आने वाला मरण।

संस्कृति के उपकरण बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: यू आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम अनुगूंज बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुचरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। श्री वीएन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुचारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्ले। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नु कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन